रहाओ। साब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करहे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुध आप भी छोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी अजंता सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना सोई जान जाना, हर गुण सद ही आख वखाण। जिन हर

भी अले मन एक न चेतस मूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ नाहाओ जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म पहया प्रणवत नानक तिनकी सरणा जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा पही परापत मान खुदे हुरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरे कितै न काम मिल साज संगत पाज केवल नाम।

प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हादय मोह बचावहो सुखी बसै मोर परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दया करिय सब बैरन को आज संघरिय पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी अहि चुन चुन सत्र हमारे मारी अहि आप हाथ दे मुझे उबरिय मरण काल का त्रास निवरिय हुजो सदा हमारे पच्छा श्री हस्तो जू करिय हो रक्षा राख ले मोह राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बांध दुष्टन के हंता तुमहू पुरी चतुर्दास कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जवन काल जोगी सब कियो बेदराज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दै जच्छने पुजायो याद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा

संमत 1755 हाड़बदी प्रथम सुख दावन तो प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा फूल परी लहो लेहो सुधारा दोहरा नेत्र तुंग के चरण तार तद्रव तीर्थ रंग श्री भगवत पूर्ण की ओ राघवर कथा प्रसंग दोहरा साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद बेबाद ग्रंथ सकल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया।

सो पावय। सदा सेवत सलाह तेरी नाम मानव सावय। नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरै। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा साब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु बिटा हो जिस दी आए वडिया।

नेत राख उर धारो ताम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंजवा।

पावड़ी जिथे तू समरथ जिथे कोए नाहे ओथे तेरी राख अग्नि उदर माहे सुन कै जम के दूत ना

जाको कृपा करी प्रभ मेरा, मिल साध संगत नाउ लिया, पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर सबना।

छोटा पुत्र बाबा मोहरी संगतां विच बैठा दनियावी विचारां कर रहा सी। सुते सिद्धि ही मुख तो आख दिता बई मैं कदे एक लख रुपया इकट्ठा नहीं वेख्या। संगतां हसन लगियां बई बाबा जी क्यों नहीं वेख्या, तुहाडे घर विच ते किसे चीज दी तोट नहीं। बाबा मोहरी जी आखण लगे साडे पिता जी माया नूं परवान नहीं करदे, अगर कोई माया देवी जांदा है लोड़बंदां विच संगतां विच वंड दिंदे ने, इस लई असी ते कदे भी माया इकट्ठी नहीं वेखी। धन गुरु अमरदास महाराज जी ने यह बचन सुन लाए।

0: महाराज आप जी ते मुर्दियां अंदर भी जान पा दिंदे हो, कोई ऐसा वर्तावा वर्तावो जी जिस वेले पातशाह नूं ऐसी बेनती कीती। महाराज फिर आखदे बीबी पानी पुत्री पानी असी अपनी उम्र जो बची है ओ तुहाडे पति नूं बख्शिश कर देवांगे।
1: हित परलोक गमन शुभ लेवो
0: एदां असी ओदी थां ते आप परलोक सुधार जावांगे। असी बहुत गुरु

0: कातों कोई कुरलाट मचावे,
1: कातों कोई कुरलाट मचावे,
0: है धर्म सूर मेरा जबर दे बरखलाफ डट जावे।
1: राण जीते लखवारी, मुर्दा हुए जिस्म ना मारे, होवे मार।

0: दुश्मन जोर अपना लाके बैगा बहुती फौज मरवा के टेलीफोन दिल्ली नू लाके आर्डर सख्त सेना दिता। आखिर फौज ने टंकी चढ़ा के तख्त अकाल दा ढा दिता। आखिर फौज ने टंकी चढ़ा के तख्त अकाल दा ढा दिता।
1: आओ जिन्ना पौल खंडियों पीते ओना डट के जंग सी कीते पावे हो गए फीते फीते फीस सिरां दी तार न पए हरिमंदर दी खातर जोदे जाना वार न पए हरिमंदर दी खातर जोदे जाना वार न पए।
0: दुश्मन जोर अपना लाके बैगा बहुती फौज मरवा के टेलीफोन दिल्ली नू लाके आर्डर सख्त सेना दिता। आखिर फौज ने टंक चढ़ा के तख्त अकाल दा ढा दिता। आखिर फौज ने टंक चढ़ा के तख्त अकाल दा ढा दिता।
1: आओ जिन्ना पौल खंडियों पीते ओना डट के जंग सी कीते पावे हो गए फीते फीते फीस सिरां दी तार न पए हरिमंदर दी खातर जोदे

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई 2024 में, हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई 2025 में, हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
2: So the Musiala, baby. Yeah.
3: Mercy.

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूं कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट

0: listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਇਹ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਹੈ। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाति पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे कार औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह के होर दुख हैं, इन्हों सारिया ही दुखा का जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करते हैं सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोबिंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। ऐथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए ता फिर दुख नेड़े नहीं आ सकते। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी ता है ही ऐसी।

0: ਪਦੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ
0: ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਿਤ ਤਨ ਲਾਵਹੇ
0: ਜਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੇ ਸੁਖ ਮੰਦਰ
0: ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ
0: ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋਤ ਸਰਸਨਾ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਏ ਧਿਆਨ ਜੋਗ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵਹੇ
0: ਜਿਸੇ ਤਿਆਗਤ ਅਵਰ ਲਭਾਵੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੋਈ ਜੈ
0: ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤਾਕਾ ਜਸ ਕਵੀ ਜੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਲ ਸਭ ਕੋ ਮਾਨੈ
0: ਮੁਕਤਾ ਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੋ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ
0: ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
1: ਰੱਬ ਦੀ ਜਪਤ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ ਪਾਵਹੇ
0: ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇ ਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੋ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ
0: ਨਿਬਲਾ ਬੁੱਤ ਸਰਾਮ ਸਨੇਹੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਹੋਲਾ ਰਹਿਤ
0: ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾਕੇ
0: ਮਨ ਸਰਨੀ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ
0: ਮਨ ਸਾਹ ਸਾਹ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਉੱਚੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੇ
0: ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਭੂਖਨ ਪਹਿਰੀਜੈ
0: ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉ ਆਲਸ ਕੀਜੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵਰ ਸਵਾਰੀ
0: ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭੋ ਕਭੋ ਨ ਵਿਸਾਰੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਕ ਧਨਾ
0: ਰਾਗ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ
1: ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ
0: ਉਠਤ ਬੈਠ ਸਤ ਸਹਿ ਧਿਆਈ
1: ਕਿਸੇ ਧਿਆਈ ਜੋ ਏ ਪੈ ਲਖੈ
0: ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰੱਖੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਦਾਨ
0: ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਤਿਸਕਾ ਧਿਆਨ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ
0: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਤਾਰੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ
0: ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤ
0: ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤ ਰਹੈ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਹੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਨਹਿ ਕਰਨ ਨਾਦ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੇਖੈ ਵਿਸਮਾਦ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਵਸਨਾ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸ ਕਰ ਚਲਹਿ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵਹਿ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ
1: ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਬਰਕਤ ਲਗ ਹੋ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗੋ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ
0: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੂਲ ਨ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ
0: ਦੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾਕੋ ਜਾਪ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ
0: ਜਿਸੈ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵਹਿ ਸਾਚ
0: ਦੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਉ ਰਾਜ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ
1: ਆਪ ਜਪਾਈ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ
0: ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ
1: ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ
0: ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ
1: ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ
0: ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤੂਤਨ ਹੋਏ
1: ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ
0: ਆਪੋ ਕਛੁ ਨ ਕਿਨਹੂੰ ਲਿਆ
1: ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੋ ਤਿਤ ਲੱਗੇ ਹਰਨਾਥ
0: ਨਾਨਕ ਇਨਕੈ ਕਛੁ ਨ ਹਾਥ ਸਲੋਕ
1: ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਸੁਮੁਖਤਾ ਹੋਏ
0: ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੀਰਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਬੇਰਾ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਏਕੋ ਉਪਰ ਜਤਨ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਨੀ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਹਿ ਸਮਾਨੀ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਆਵੈ ਬਸ ਪੰਚਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨ ਕਥੂੰ ਭਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਤਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਮੀਤ
0: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸੋ ਨੀ ਬੈਰ
0: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਵੀਗਾ ਪੈਰ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੈ ਪਰਮਾਨੰਦਾ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹਉ ਤਾਪ
0: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਤੇ ਜੈਸਾ ਵਿਆਪ
1: ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਾਧ ਪੜਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾਈ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਕਭੂ ਭਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ
0: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹੈ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਉੱਚੈ
0: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ
0: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰ ਹੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਧਨ ਬੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰ ਹੈ
1: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ
0: ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ
0: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਬਾਸੁਰ ਦੇਵਾ
1: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਗਲ ਜਨਮ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਕਾਲ
0: ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋ ਤਨਹਾਲ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕਲੂਕਤ ਹਰੈ
0: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਸ਼ਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ
1: ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋ ਹੀ ਫਲ ਪਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਤ ਬਸੈ
0: ਨਾਨਕ ਕੁਦਰੈ ਸਾਧ ਸੁਣ ਰਸੈ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸੁਣੋ ਹਰ ਨਾਉ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਤਰੈ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਲੱਗੈ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ
0: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਘੜ ਘੜ ਦੀਠਾ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ
0: ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੈ
0: ਜਿਤਾ ਸੁਣੈ ਤੇ ਤਾ ਬਖਿਆਨੈ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਊਚੀ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ ਸਲੋਕ
1: ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਅਵਰ ਨ ਪੇਖੈ
0: ਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ
1: ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ
0: ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ
0: ਜੈਸੇ ਜਲ में कमले ले
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख
0: जैसे सूर सर्व को सुख
1: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान
0: जैसे राज रंग को लागे तुल पवान
1: ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक
0: ज्यों बसदा को खुदे को चिंतन ले
1: ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ
0: नानक ज्यों पावक का सह स्वभाव
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
0: जैसे मैल न लागे जला
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश
0: जैसे तर ऊपर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा
0: मन अपने है सब ते नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन भये
0: नानक जन प्रव्याप करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
1: ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास
0: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा
0: ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा
0: ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी का होय सुफला
0: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग
0: ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम प्रवार
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत
0: ब्रह्म ज्ञानी अंगद त्यागत
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का पिता
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
1: ब्रह्म ज्ञानी का होए अचिंत
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाइये
0: ब्रह्म ज्ञानी को बरबल जाइये
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है
0: ब्रह्म ज्ञानी के सगलवान माहे
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद
0: ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अदाखर
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
1: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने
0: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता
0: ब्रह्म ज्ञानी सत जीव है नहीं मरता
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार
0: ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार
1: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक
1: और धारै जो अंतर नाम सर्व में भेखै भगवान निमक निमक
0: ठाकुर नमस्कार नानक ओह अपरस सगल निस्तार अष्टपदी
1: मिथ्या नाही रसना परस
0: मन में प्रीत नरंजन दर्श
1: कर्त्रिया रूप न भेखै नेत्र
0: साध की टहल संत संग हेत
1: कर्णन सुने काहू के निंदा
0: सबते जाने आप को मंदा
1: और प्रसाद विखिया पर हर है
0: मन की वासना मन ते टरै
1: इंद्री जत पंच दोख ते रहत
0: नानक कोट मदे को ऐसा परस
1: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
0: विसन की माया ते हुए भिन्न
1: कर्म कर्त हो वह ने कर्म
0: इस वैष्णव का निर्मल धर्म
1: काहू फल की इच्छा नहीं बांचै
0: केवल भगत कीर्तन संग रचै
1: मन तन अंतर सिमरन गोपाल
0: सब ऊपर होवत कृपाल
1: आप दृढ़ अबरह नाम जपावै
0: नानको वैष्णव परम गत पावै
1: भगवती भगवंत भगत का रंग
0: सगल त्यागै दुष्ट का संग
1: मन ते बिनसै सगला भरम
0: कर पूजै सगल पार ब्रह्म
1: साध संग पापा मल खोवै
0: इस भगवती की मत उत्तम होवै
1: भगवंत की टहल करै नित नीत
0: मन तन अर्पै विष्णु प्रीत
1: हर के चरण हृदय बसावै
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै
1: सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है
0: राम नाम आत्म सुध है
1: राम नाम सार रस पीवे
0: उस पंडित के उपदेश जग जीव है
1: हर की कथा हृदय बसावे
0: सो पंडित फिर जो न आवे
1: वेद पुराण सिमरत बूझे मूल
0: सुख मैं जाने अस्थूल
1: जो वरना को दे उपदेश
0: नानक उस पंडित को सदा देश
1: बीज मंत्र सर को ज्ञान
0: जो वरना मैं जपे को नाम
1: जो जो जपे तिसकी गत होए
0: सा संग पावे जन कोए
1: कर कृपा अंतर उरता है
0: बस प्रेत मुक्त पात्र को उतार है
1: सर्व रोग का यो खद नाम
0: कल्याण रूप मंगल गुण काम
1: काहू जुगत कितने न पाई धर्म
0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
0: जिसका नाम सत राम दास
1: आत्म राम तिस नदरी आया
0: दास संतन पाए तिन पाया
1: सदा निकट निकट हर जान
0: सो दास दरगाह परवान
1: अपने दास को आप कृपा करे
0: जिस दास को सब सो जी पर है
1: सगल संग आत्म उदास
0: ऐसी जुगत नानक राम दास
1: रब की आज्ञा आत्म हितावे
0: जीवन मुक्त सो कहावे
1: ऐसा हक तैसा उस सोग
0: सदा अनंत है नाही वियोग
1: तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी
0: तैसा अमृत तैसी बिकाटी
1: ऐसा मान तैसा अभिमान
0: ऐसा रंग तैसा राजान
1: जो वरताए साई जुगत
0: नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त
1: पार ब्रह्म के सगले ठाऊ
0: जित जित घर रखे तैसा तन नाम
1: आपे करन करावन जोग
0: भावे सोई फन होग
1: असरे आप होए अंत तरंग
0: लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग
1: जैसी मत दे तैसा प्रकाश
0: पार ब्रह्म करता अविनाश
1: सदा सदा सदा दयाल
0: सिमर सिमर नानक पहे निहाल श्लोक
1: उस्तत करे अनेक जन अंत न पारावार
0: नानक रचना प्रभ रची बहु विद्यनक परकार अष्टपदी
1: कई कोट होए पुजारी
0: कई कोट आचार व्यवहारी
1: कई कोट भय तीर्थ वासी
0: कई कोट बन प्रमय उदासी
1: कई कोट वीर के स्रोते
0: कई कोट तपीसर होते
1: कई कोट आत्म ध्यान धारी
0: कई कोट कब काव विचारे
1: कई कोट नवतन नाम त्यावहे
0: नान करते का अंत न पावे
1: कई कोट भय अभिमानी
0: कई कोट अंध अज्ञानी
1: कई कोट कृपण कठोर
0: कई कोट अपिक आत्म ने
1: को कई कोट पर दर्भ को हिरहे
0: कई कोट पर दुख न करे
1: कई कोट माया श्रम माहे
0: कई कोट पर देश परमा है
1: जित जित लाभ होते तित लगना
0: नानक करते की जाने करता रचना
1: कई कोट सिद्ध जति जोगी
0: कई कोट राजे रस भोगी
1: कई कोट पंखी सर्प उपाए
0: कई कोट पात्र बृख न बजाए
1: कई कोट पवन पानी में संतर
0: कई कोट देश भूमंडल
1: कई कोट शशि असुर नखत्र
0: कई कोट देव दानव इंद्र शिर शतर
1: सगल समग्री अपने सूत धार
0: नानक जिस जिस भावे तिस तिस निस्तार
1: कई कोट राजस तामस सातक
0: कई कोट वेद प्राण समृति अर शास्त्र
1: कई कोट की रतन सुमंद
0: कई कोट नाना प्रकार जंत
1: कई कोट की ये चिर दीवे
0: कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे
1: कई कोट जख के निर्पिशाच
0: कई कोट भूत प्रेत सु कर्मरिकाच
1: साते नेरा सब हूं ते दूर
0: नानक आप लिपतरे आप प्रभुर
1: कई कोट पाताल के वासी
0: कई कोट नरक स्वर्ग निवासी
1: कई कोट जन्म है जीव है मर है
0: कई कोट बहुत जोनी फिर है
1: कई कोट बैठ सही खाहे
0: कई कोट काले थक पाहे
1: कई कोट की ये धनवंत
0: कई कोट मा चिंत
1: जय जय भाणा तह तह राखी
0: नानक सब कुछ प्रभ के हाथे
1: कई कोट भय बैरागी
0: राम नाम सख्त लिव लागी
1: कई कोट प्रभ को खोजंते
0: आत्म मह पार ब्रह्म लहंते
1: कई कोट दर्शन प्रप्यास
0: जिनको मिलियो प्रभ विनाश
1: कई कोट मांगे है सत्संग
0: ब्रह्म तिन लगा रंग
1: जिनको होए आप सो प्रसन्न
0: नानक तेजन सदा तन तन
1: कई कोट खानी अर खंड
0: कई कोट आकाश ब्रह्मंड
1: कई कोट होए अवतार
0: कई जग की नो विस्तार
1: कई बार पसरियो पासार
0: सदा सदा एक एक अंकार
1: कई कोट कीने बो भांत
0: सत्य होए प्रभ माहे समात
1: ताका अंत न जाने कोई
0: आपे आप नानक प्रभ सोए
1: कई कोट पार ब्रह्म के दास
0: हो वत्या तम प्रगास
1: कई कोट तत्व के देते
0: सदा नहार एको नेत्रे
1: कई कोट नाम रस पीव है
0: अमर भय सद सद ही जीव है
1: कई कोट नाम गुण गाव है
0: आत्म रस सुख सह समाव है
1: अपने जन को साथ साथ संभारी
0: नानक हे परमेश्वर के प्यारे श्लोक
1: करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोई
0: नानक तिस बलहार ने जल थल मई अल सोए अष्टपदी
1: करन करावन करने जोग
0: जोत स्वभाव है सोई होग
1: फिर मैं था उप नहारा
0: अंत नहीं किस पारा वारा
1: हुक्मे धार अधार रहावे
0: हुक्मे उपजे हुक्म समावे
1: हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार
0: हुक्मे अनेक रंग प्रकार
1: कर कर दिखे अपनी वडियाई
0: नानक सब में रहा समाई
1: रब भावे मनो गत पावे
0: रब भावे ता पात्र त्रावे
1: रब भावे बिन शास्ति रखे
0: रब भावे ता हर गुण पख है
1: रब भावे ता पत उधार है
0: आप करे अपन विचार है
1: दोहा श्रिया का आप स्वामी
0: खेले से अंतर जामी
1: जो भावे सो कार करावे
0: नानक दृष्टि और न आवे
1: बहु मनुख ते क्या होए आवे
0: जोत स्वभावे सोई करावे
1: इसके हाथ होए ता सब पिछले
0: जोत स्वभावे सोई करे
1: मन जानत बिखिया मह रचे
0: जे जानते अपने आप बचे
1: भरमे भूला दह दिसतावे
0: नमक माहे चार कुंड फिर आवे
1: कर कृपा जस अपनी भक्त दे
0: नानक ते जन नाम मिले
1: छिनवे नीच कीट को राज
0: बार ब्रह्म करीब नवाज
1: जा का दृष्ट कछु न आवे
0: जिस तत्काल दह दिस प्रगटावे
1: जा को अपनी करे बख्शीस
0: ताका लेखा न गणे जग
1: जीव पिंड सब तिसकी रास
0: कट पूर्ण परम प्रगास
1: अपनी बनत आप बनाई
0: नानक जीव देख बढ़ाई
1: इसका बल नाही इस हाथ
0: कल करावन सब को नाथ
1: आज्ञाकारी बपरा जियो
0: जोत स्वभाव है सोई फन थी
1: अब हूँ ऊंच नीच मैं बसे
0: अब हूँ सोग हर करंग हसे
1: अब हूँ निंद चिंद व्यवहार
0: अब हूँ उपकाश प्याल
1: अब हूँ बेता ब्रह्म विचार
0: नानक आप मिलावन हार
1: अब हूँ नृत्य करे बहु भांत
0: अब हूँ सोए रहे दिन रात
1: अब हूँ महा क्रोध विकराल
0: अब हूँ सर्व की होतर वाल
1: अब हूँ होए वह बड़ राजा
0: कभू भिखारी नीच का साजा
1: कभू अब कीर्त में आवे
0: कभू भला भला कहावे
1: ज्यों प्रभ राखे ते भी रहे
0: गुर प्रसाद नानक सच कहे
1: कभू होए पंडित करे बख्यान
0: कभू मोहन धारी लावे ध्यान
1: कभू तट तीर्थ स्नान
0: कभू सिद्ध साधक मुख ज्ञान
1: कभू कीट हस पतंग होए दिया
0: अनक जोन परमे परमिया
1: नाना रूप जो स्वांगी दिखावे
0: जो प्रभ भावे तवे न जावे
1: जो भावे सोई होए
0: नानक दूजा अवर न कोए
1: कभू साध संगति पावे
0: उस स्थान ते बौर न आवे
1: अंतर होए ज्ञान प्रकाश
0: उस स्थान का नहीं विनाश
1: मन तन नाम रते एक रंग
0: सदा बसै पर ब्रह्म का संग
1: ज्यों जल मह जल आए कटाना
0: ज्यों ज्योति संग ज्योत समाना
1: मिट गए गवन पाए विश्राम
0: नानक प्रभ के सद कुर्बान श्लोक
1: सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तले
0: बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले ज्येष्ठपदी
1: जिसके अंतर राज अभिमान
0: सो नक पाति होवत स्वान
1: जो जान है मैं जो बनवंत
0: सो होवत पिष्टा का जंत
1: आप उसको कर्मवंत कहावे
0: जन्म मरे पो जोन परमावे
1: धन भूम का जो करे गुमान
0: सो मूर्ख अंधा अज्ञान
1: कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे
0: नान की है मुक्ति अगै सुख पावे
1: धनवंत होई कर करवावे
0: तरण समान का चंग न जावे
1: बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस
0: पर भीतरता का होए विनाश
1: सब ते आप जाने बलवंत
0: होए जाए पसमंत
1: किसै न पद आप अहंकारी
0: धर्म राय तिस करे खुआरी
1: गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान
0: सोजन नानक दरगह परवान
1: कोट कर्म करे हों धारी
0: शरम पावे सगले बरथारे
1: अनक तपस्या करे हंकार
0: नरक स्वर्ग फिर अवतार
1: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
0: हर दरगह को कैसे गवे
1: आप को जो भला कहावे
0: इसे भलाई निकट न आवे
1: सर्प की रेन जा का मन होए
0: कहो नानक ताके निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझते कश होए
0: तब इस को सुख नाही कोई
1: जब यह जाने मैं किस करता
0: तब लग गर्भ जोन में फिरता
1: जब धारे को बैरी मीत
0: तब लग नेचर नाही चीत
1: जब लग मोह मगन संग माए
0: तब लग धर्म राय देश जाए
1: रब कृपा से बंधन टूटे
0: गुरु को साधना अनक हो छूटे
1: सहस कटे लख कोट तावे
0: रत्न आवे माया पाछे पावे
1: अनक भोग बिखिया के करे
0: नैत पतावे खप खप मरे
1: बिना संतोख नहीं को राजे
0: सुपन मनोरथ फिर से सब काजे
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: प्रभागी किसे प्राप्त होए
1: कर्ण करावन आपे आप
0: सदा सदा नानक हर जाप
1: कर्ण करावन करने हार
0: इसके हाथ कहां विचार
1: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
0: आपे आप प्रभु सोए
1: जो किस पीनो सो अपने रंग
0: तब ते दूर सब हूं कै संग
1: दूजे देखे करे विवेक
0: आपे एका पै अनेक
1: मरे न बिनसे आवे न जाए
0: नानक सधी रह समाए
1: आप उपदेशे समझे आप
0: आपे रचिया सबके साथ
1: आप कीनो अपन विस्तार
0: सब कुछ उसका हो करने हार
1: कोसते पिन कहो किश होए
0: हाथ नंतर एक सोए
1: अपने चलित आप करने हार
0: गौत करे रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माहे
0: नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
0: गुर प्रसाद के नै बखियानी
1: सत सत सत सब कीना
0: कोट मदै के बिरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप
0: अत सुंदर अपार अनूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: कट कट सुनी सर उन बखियानी
1: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
0: नाम जपे नानक मन प्रीत श्लोक
1: संत सरन जो जन पर सो जन उतर नहार
0: संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी
1: संत के दुखन हार जा कटे
0: संत के दुखन जमते नहीं छुटे
1: संत के दुखन सुख सब जाए
0: संत के दुखन नरक में पाए
1: संत के दुखन मत हो ही मलीन
0: संत के दुखन शोभा दे ही
1: संत के हथे को रखे ना कोई
0: संत के दुखन थान भ्रष्ट हो
1: संत कृपाल कृपा जे करे
0: नानक संत संग नंदक भीतर
1: संत के दुखन ते मुख पवे
0: संतन के दुखन काग ज्यो लवे
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
0: संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए
1: संतन के दुखन तृष्णा मह जले
0: संत के दुखन सब को छले
1: संत के दुखन तेज सब जाए
0: संत के दुखन नीच निचाए
1: संत दुखी का थाउ को नाही
0: नानक संत भावे ता ए पी कत पाए
1: संत का निंदक महा अतताई
0: संत का निंदक खिन टिकन न पाए
1: संत का निंदक महा हत्यारा
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा
1: संत का निंदक राज ते हीन
0: संत का निंदक दुखिया अर्दी
1: संत के निंदक को सर्व रोग
0: संत के निंदक को सदा बिजो
1: संत के निंदा दुख मैं दुख
0: नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख
1: संत का दुखी सदा पवित्र
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित
1: संत के दुखी को डान लागे
0: संत के दुखी को सब त्याग
1: संत का दुखी महा अहंकारी
0: संत का दुखी सदा बेकारी
1: संत का दुखी जन्म मरे
0: संत की दुख न सुख ते तरे
1: संत के दुखी को ना ही ठाऊ
0: नानक संत भावे ता लय मिलाए
1: संत का दुखी हर बीज ते टूटे
0: संत का दुखी किते काज न पहुंचे
1: संत के दुखी को उदयान परमाइए
0: संत का दुखी उजड़ पाइए
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा
0: जो सास बिना मृत की लोथा
1: संत के दुखी की जड़ किस नाही
0: अपन बीजिया पे ही खाए
1: संत के दुखी को अवर न रख नहार
0: नानक संत भावे ता लय उबार
1: संत का दुखी इउ बिल लाए
0: ज्यों जल बे होन मछली तड़फड़ाए
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजा
0: जो पावक ईंधन नहीं त्रापे
1: संत का दुखी छुटे अकेला
0: जो बुआर तेरे खेत माहे दहेला
1: संत का दुखी धर्म ते रहत
0: संत का दुखी सत मिथ्या कहत
1: कीर्त ने दुखा तो रही पया
0: नानक जो तस भावे सोई थिया
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
0: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए
1: संत का दुखी सदा सहकाइए
0: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइए
1: संत के दुखी की पूजा ना आसा
0: संत का दुखी उठ चले निराशा
1: संत के दुख न दृष्टे कोई
0: जैसा भावे तैसा कोई होए
1: पया कीर्त न मिटे कोई
0: नानक जाने सच्चा सोए
1: सब कर तिसकी हो करने हार
0: सदा सदा तिसको नमस्कार
1: रब की उसत करहो दिन रात
0: तिसे त्यावो सास गिरा
1: सब कछ वरते तिसका किया
0: जैसा करे तैसा को थिया
1: अपना खेला करने हार
0: दूसर कौन कहे विचार
1: जिसनु कृपा करे तिस आपन नाम दे
0: वड पागी नानक जन से श्लोक
1: तजो सियान पुसुर जन हो सिमरो हर हर राई
0: एक आस हर मन रखो नानक दुख परम को जाए। ਪਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਤੀ ਸਭ ਜਾਨ
0: ਦੇਵਨ ਪਾਉ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ
1: ਜਿਸਕੈ ਦੀਆ ਰਹਿ ਅਗਾਹੇ
0: ਮੌਰ ਨ ਤਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ
1: ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ
0: ਮਾਨਵ ਕੈ ਕਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਹਾਥ
1: ਜਿਸਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਹੋਏ
0: ਜਿਸਕਾ ਨਾਮ ਰਖ ਕੰਠ ਪਰੋਏ
1: ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਬਿਘਨ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ
1: ਉਸਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ
0: ਕਰਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ
1: ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ
0: ਸਦਾ ਸਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ
1: ਨੈਨੋ ਪੇਖ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗ
0: ਸਾਹ ਸੰਗ ਪਿੰਡ ਸਹਿ ਸਭ ਸੰਗ
1: ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ
0: ਮਿਟੈ ਪਾਪ ਜਪੀਐ ਹਰ ਬਿੰਦ
1: ਹਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸਰਵਨ ਹਰ ਕਥਾ
0: ਬਹਾਦਰ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮੱਥਾ
1: ਬੜ ਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹੀ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਹੇ
1: ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ
0: ਚੇਤਨ ਮੰਤਕ ਨੀ ਸੰਸਾਰ
1: ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਹਰ ਮੁਖੀ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸੁਖੀ
1: ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਪਛਾਣੈ
0: ਤੇ ਤੁਤ ਕੀਓ ਸੋਝੀ ਜਾਣੈ
1: ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ
0: ਨਾਨਕ ਤਨੈ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਜੈ
0: ਜਿਸ ਕੀ ਜਾਣੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ
0: ਸਰਬ ਰੋਗ ਤਿਓ ਹਰ ਜਨ ਰਹਿਤ
1: ਹਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਵਖਿਆਨ
0: ਰਸਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਨ
1: ਏਕ ਉਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ
0: ਜਿਸ ਕੀ ਕਟੀਏ ਜਨ ਕੀ ਫਾਸਾ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ
0: ਨਾਨਕ ਪਸੰਨ ਲਾਗੈ ਦੁਖ
1: ਜਿਸ ਕੋ ਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਨ ਜਿਤੇ ਆਵੈ
0: ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵੈ
1: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ
0: ਸੋ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ
1: ਜੈਸਾ ਸਾਥ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਇਆ
0: ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ
1: ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੀਜਿਆ
0: ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਭ ਪੂਜਿਆ
1: ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਸ਼ਮੂਲ
0: ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਖਮ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲ
1: ਮੈਂ ਕਿਸ ਜਨ ਮੈਂ ਨੈ ਕਿਸ ਮਰੈ
0: ਆਪਣੇ ਚਲਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ
1: ਆਵਨ ਜਾਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ
0: ਅਜਾਕਾਰੀ ਤਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ
1: ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮੈਂ ਆਪ
0: ਅਨ ਜੁਗਤ ਰਚ ਥਾ ਬਿਉਥਾ
1: ਅਵਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਸ ਖੰਡ
0: ਧਾਰਨ ਧਾਰ ਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮੰਡ
1: ਲਖ ਭੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ
0: ਆਪ ਜਪਾਏ ਤਾ ਨਾਨਕ ਜਾਪ
1: ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੋ ਬਾਵੰਤ
0: ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਦਰੈ ਤਨ ਮੰਤ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ
1: ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਈ ਕਿਰਪਾਲ
0: ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਭਏ ਨਿਹਾਲ
1: ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਹੀ ਲਾਗੈ
0: ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬਟ ਭਾਗੈ
1: ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੇ ਵਿਸਰਾਮ
0: ਨਾਨਕ ਤਨ ਪੁਰਖ ਕੋ ਉਤਮ ਕਰਮਾਨ
1: ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਪਸੈ ਹਰ ਸੰਗ
1: ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਏ
0: ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਪਛਾਣੈ ਸੋਏ
1: ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ
0: ਜੈਸਾ ਸਤ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ
1: ਜਿਸ ਦੀ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਮਾਹੀ ਸਮਾਈ
0: ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਹਨੂੰ

चोरा यारा ते कुड़िया रखा रबा बेकार एक होंदा खाए चले था दिना बिकाई कार जल था जिया पुरिया लोहाया कार आया कार।

पौड़े बिन सतगुरु किने ना पायो, बिन सतगुरु किने ना पाया। सतगुरु विचाप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिल गए सदा मुक्त है जिन विच हो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेब की दिशन तो खी जिन्हें सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सुखे तो धर्म कमाया कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

बौड़ी सच्चा साहेबेग तुझने सचो सच बरताया, जिस तू दहेज से मिले सच ता तिने सच कमाया, सतगुर मिलिए सच पाया, जिनके हृदय सच वसाया, मूर्ख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवाया, विच दुनिया का है आया।

0: लोग महला पहला पर गड्डी लदिए पर परिये साथ पर बेड़ी पाइए पर गड्डिए खास पढ़िए है जेते वर्ष वर्ष पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेखे की गल और हो में जखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया तेता कड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तो लव्या।

0: काल पूर्व वर्त्या कल काल बेताल बियो बीज बतले के अब क्यों बेदाल जे को है ताऊ के रुती हुरत होए नान पाहे बारा कोरे रंग ना सोए फैबित खुमचड़ा ये सरुम पतन होए नान पक्ति जे रपे पूरे सोए दा कोए
1: महला पहला लब पाप धोए राजा मेहता कूड़ हुआ शिकदार काम ने इज्जत पूछिए बह बह करे विचार अंधी रजित ज्ञान होनी पाहे प्रेमरदार ज्ञानी ने चेवा देवा विरूप करे सिंगार उच्चे कुके वदा गवे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजर संजय करे प्यार तरमी तर्म करेगा वा वह मंगे मुख द्वार जति सदा वह जुगत न जाने है षड बह है करबार सबको पूरा आपे होवे कठ न कोई आखे पत प्रवण पिछे पाइए ता नानक तोलिया जापे
0: पहला का सच्चा वेखे सोए सबनी छाला मारिया करता करे सोए अगे जात ना जोर है।

दुख दारू सुख रोग पे जा सुकाम न होई, तू करता करना में ना ही जाहो करी ना होई, बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ, जात में जो जोत

0: देखा जोर गिरथुबा हो धुआ पूरा तपे का सत गिरथुबा हो काजुगरा थगन का कूड़ा गैर रुथवा हो।
1: पहला शाम कहे सितंबर स्वामी सच में आशा सच रहे।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पठानी अमलकिया
1: चारे वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाप भक्त कर नीच

सतगुरु बठों वारिया जित मेरे खसम संभालिया जिनका उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन नेत्री जगत ने हालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोहिता।

0: ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया। सबको आख पाए हुए प्राणा सटिए भी फिर पाया होर नानक तग न तुटे जे तग हो वै जो।
1: महला पहला नाय मनिए पत उपजे साला ही ससूत दरगे अंदर पाइए तग न तुट सपूत। महला पहला तग न इंद्री तग न नारी पलके थुक पड़े निदारी तग न प्यारी तग न हथी तग न जेवा तग न अखी बे तग आया पे बते।

तेरा है। साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा, जन भुखा सब गवाई आ, कार सांत सुख मनाए वसया, जन इच्छा सब बुझाई आ, सदा कुर्बान किया गुरु बेटो, जिस दिया वडियाई आ, कहे नानक सुनो संत हो, सब तर प्यारो, साचा नाम मेरा आधार, वाजे पंच शब्द तित कर सुभागे,

चंचला चतुराई कने ना पाया, चतुराई ना पाया कने तो सुन मन मेरिया। ए माया मोनी जिने परम भुलाया, माया था मोनी तने की।

सतगुरु चरण तन सुबेला करी तन तन मूरत पलसार तन सो दिन सुसंजोगड़ा

0: सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मांड सचे तेरे लो सचे आकार सचे तेरे करने सर विचार सचा तेरा मन सचा दीवान सचा तेरा हुक्म सचा फरमान सचा तेरा कर्म सचा निशान सचे तू दाखे लख करोड़ सचे सब तान सचे सब जोर सची तेरी सिफत सची साला सची तेरी कुदरत सचे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कच न कच महला
1: पहला बड़ी बड़े जा पुछना दात बड़ी बड़े जा पे आप नानक कारना कथनी जाए कीता करना सर्व जाए महला दूजा
0: एहो जग सच्चे की है कोठड़ी।

एक गल सिमरन, जे तू ग्रंथ पढ़ रहे हैं ओदी प्रैक्टिस नहीं कर रहा। गुरु गोबिंद सिंह कहते सारी धरती दे ग्रंथ तू वेख ले, नानक लेख है एक गल होर खौमे झकना झाख। इनू गुरु अर्जुन साहब कहते पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो। ये गल गुरु गोबिंद सिंह कह रहे हैं जी। असल च वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख है, सारे देखे हो किताब सारिया ग्रंथ कट्ठे किते हो। महाराज कहने पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल भुयंगम साधे पंच जना से संग ना छुटक्यो, अधिक अहंग बुद्ध बांधे प्यारे। इन विद मिल न जाई मैं किए, कर्म अनेका हार पर्यो, स्वामी के द्वार है दीजे बुद्ध विवेका। पुराण पढ़े का क्या गुण, सुनो इस बिनती नु पीर साहब। वेद पढ़े, पुराण पढ़े, कुरान पढ़े, की पर की पला होया। कहन लगे मैं इना कुछ चेते कर लिया। वैसे शब्द किते खोल के अर्थ हुन गुरबाणी दे समझ पै जाए, जेडे आपां वी झगड़िया च पए ना, हालत साडी वी होई। कहने इन्ने सारे वेद चेते ने, इहदी खोपड़ी च इना कुछ चेता। कहन लगे तेरे ग्रंथा दा ज्ञान इस तरह जिवें खोते दी पिठ उत्ते किसी ने चंदन ला दिता होवे। सुनो चंदन कीमती है, खोते कोल समर्था है भार चुकण दी, पर उनु एनी बेसमझ नु समझ कोई नहीं जड़ा मेरे पिठ ते वे कीमती किन्ना कु है। कई बारी धर्म दे ग्रंथ दे शब्द कंठ हो जांदे ने गुरमुखो, उहदी कीमत दी सार नहीं पता हुंदा। वेद पुराण पढ़े क्या का गुण, खर चंदन जस पारा, राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरस पारा। वेदा में नाम उत्तम सो सुने नाहीं, फिर ज्यो बेतालिया। नाम नु तां सुने ने बस तुका कड कड के लड़ना शुरू कर दिता। महाराज भाई साहब ने कहा वेद कते भुलाए कै मोए लालच दुनी शैताने, सच किनारे रह गया खै मरदे बामण मोलाने। उस कॉन्सेप्ट च गल कही गई, वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान का पिक है, हर चीज देखिए। पर महाराज अगे बचन कर रहा, पौन आहार, पौन आहवा जी, आहार दर्थ आप सारे जाने, खुराक भोजन। कई ऐसे ने जेडे सूक्ष्म हो जाते ने, रोटी नहीं खाते, वह पौन नू आहार बनाते ने। महाराज कहते मैं ये भी देखे जी, पौन आहारी जति जत धार, जेडे जमांदरू बाल जति जिन्होंने यत नू धारण किया, उन्होंने गृहस्थ नू अपनाया ही नहीं। महाराज कहते ने पौन आहार जति जत धार, सबै सो विचार सबै दर ते सारे। कईयां ने पाठ कट्ठा कीता सो विचार, जे थोड़ा जा वेख लीए चंगे विचार वाले बंदे, जेड़े चंगे ख्याल देने वाले सन समाज। महाराज कहते ने पौन आहार हवा नू भखण वाले, जत नू धारण करन वाले, सबै सो विचार हजारक हजारक, हजारां कु एक नहीं, हजारा पौन हारी देखे, हजारा जति देखे, हजारा जेड़े ने अपने आप नू ब्रह्मचारी कहने वाले देखे, समय सो विचार हजार के देखे, हजारा देखे। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज तुसी ये तीन तुकां च तीन पंक्तियां च ये बख्शिश कीती, पर आखिर तीर्थां दा इशनान भी तां कर्म बड़ा कठिन है ना। दया करनी, दम रखना, दमन करना, संयम रखना, करन बड़े औखे ने। सच्चे पातशाह किताबां पढ़निया ग्रंथ पढ़ने बड़ी एनर्जी लगती। तुसी यह भी कह दिता पौन हारी, कोई साधना है तां पौन दा हार कीता, बड़ी कमाई होवे तां ही बंदा जीव दे चस्के ते रोटी ते काबू पाए। महाराज जिन्हां ने गृहस्थ भी नहीं धारण किया, अपने आप नूं रोक के रखिया, पौन आहार जति जत तार, सबै सो विचार हजार के देख, हजारा महाराज कहिंदे मैं देखे जी। सतगुरु फिर कहना की चाहते हो? महाराज कहिंदे बस इको गल कहनी चाहना, श्री भगवान भजे बिन भूपत। दान कर रहा पर सिमरन नहीं कर रहा, विखावे दा तीर्थ नहा रहा पर अंदर दी मैल नहीं धो रहा, बार मुखी इंद्रिया दा दमन करदा पिया पर फुरने ते काबू कोई नहीं, मनवा काबू च नहीं। महाराज कहने बार मुखी पाठ करदा, पाठ जबान कर दी, मन पता नहीं की पड़ी जा।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 AM Gurbani segment is brought to you in memory of Sardar Ajit Singh Bad and Sardarni Surinder Kaur Bad. 1550 Radio de utte Gurbani de kise vi program nu sponsor karna chahunde ho ta call karo
2: 2 � 2 152 तक धनिये दिया दो गुच्छियां 1.25 नू ताजा अदरक लवो 98 सेंट्स नू पाउंड बिना बीज वाला हदवाना 78 सेंट्स नू पाउंड अते पालक लवो 1.29

राम कली मल्ला पहला जित दर वसे कवन दर कहिए दरा भीतर दर कवन लहे जिस दर कारण फिरा उदासी सो दर कोई आए कहे। हर दर तो हर घर तो उदास होके निराश होके जिस घर दी जिस दर दी मैं तलाश कर रहा कोई ते दसे। सतगुरु कहिंदे ने कोई ते दसे ओ दर कैसा है ओ दर किथे है। दर घर दी व्याख्या तो पहले दास ने इस नुक्ते नूं लिया जिस दर कारण फिरा उदासी। इस तों बाद दर घर दी गल उदास कहिंदे ने उद आसन अपने कोल बैठना ते अपने कोल कौन बैठेगा जो सारियां तो निराश है। आसा मनसा सगल त्यागे जगते रहे निराशा। जितने चिर तक मनुख सुखां दी डोरी दूजे नाल जोड़ी रखता है दूजे तो निराश नहीं आउंदा वो फिर अपने नेड़े आउंदा भी नहीं वो उदास नहीं आउंदा। अपनी आत्मा दे नेड़े होण तो पहले अपने मन दे नेड़े होना आउंदा है और अपने मन दे नेड़े होण तो पहले अपने तन दे नेड़े आउंदा है। मनुख दूजियां दे नेड़े है अपने तो दूर है। जिस दर कारण फिरा उदासी निराश कौन आउंदा है। दास ने परसों अर्ज कीती सी प्रथम सत्संगी होवे ते गुरु दा शब्द चोट कर जाए जप रहे होवे बाणी बाणी चोट कर जाए। वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहे होवे वाहिगुरु तीर दी तरह लगे ये निराश हो जाएगा उदास हो जाएगा। दूसरा अपनी अकल तो चोट खावे। अकल इतनी महान कि दुनिया छोटी हो गई है कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। अपनी अकल तो चोट खा के भी दुनिया दे कुछ सियाने पुरुष निराश होए ने उदास होए ने। तीसरा संसार तो ही कोई वड्डी चोट लग गई है कोई हादसा हो गया है। छोटी दा धनहड़ से दिवालिया हो गया बड़ी प्रतिष्ठा से बेइज्जती हो गई है बड़ी समर्था ते शक्ति से सब जांदी रही। ये जगत तो चोट खा के भी मनुख पूर्ण तौर ते निराश हो सकता है जगत तो और उदास हो सकता है। हुण मैं अर्ज करा जिहड़ा अजे तक टोटली निराश नहीं उदास नहीं पहला तो कोई गहरा सत्संगी नहीं है कोई गहराई नाल सुनदा ही नहीं है। जैसे मैं सवेरे अर्ज कीती सी मनुख बहुत सारे धर्म ग्रंथ ते किताबां पढ़ लैंदा बड़ियां बड़ियां डिग्रियां हासिल कर लैंदा है पर महाराज कहिंदे ने उतने चिर तक वो मूर्ख है जितने चिर तक सिर दे लेख नहीं पढ़दा। काया कागद मन परवाणा सिर के लेख ना पढ़े ए आणा। पर कई ये पुछण लग पए वो सिर दे लेख किवें पढ़ी है। मैं सवेरे खुलासा कीता सी सिर दे च चलदे ने विचार उहनां नूं वेखणा ही पढ़ना है। सिर दे च चलदी है सोचनी उहनूं वेखणा ही पढ़ना है। सिर दे च चलदियां ने यादां उहनूं वेखणा ही पढ़ना है। कोई नहीं वेखदा अंदर विचार चलदे रहिंदे ने कौन देखदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने एहो मन आर सी कोई गुरमुख देखे। मन ते शीशा है इस शीशे दे

0: ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਦੇਖਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਮਨ ਆਰ ਸੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਖੇ। ਮਨ ਦਰਪਣ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਪੜਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਏ, ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸੋਚਣੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਭਰ, ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੀ ਯਾਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਚ, ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਕਾਗਦ ਮਨ ਪਰਵਾਣਾ, ਸਿਰ ਕੇ ਲੇਖ ਨਾ ਪੜੇ ਇਆਣਾ, ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਇਆਣਾ ਹੈ, ਨਾਦਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਲੇਖ ਪੜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਆਣਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਸਿਰ ਦੇ ਲੇਖ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਿਰ ਦੇ ਚ ਯਾਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਿਰ ਦੇ ਚ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਇਆਣਾ, ਬੜੇ ਕੁਛ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਕਿ ਜਦ ਸਿਰ ਦੇ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੋਚਣੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਪੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਇਆ ਕਾਗਦ ਮਨ ਪਰਵਾਣਾ, ਸਿਰ ਕੇ ਲੇਖ ਨਾ ਪੜੇ ਇਆਣਾ, ਕੌਣ ਸਿਰ ਦੇ ਲੇਖ ਪੜਦਾ? ਤੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾਸ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸੀ ਸੱਜਣ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਦਾਸਣ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੀਜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੌਥਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ? ਹੁਣ ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇਗਾ? ਪ੍ਰਥਮ, ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸਤਸੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਰੋਤਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ, ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਸਰੋਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਤਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਤਿੰਨ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵੈਸੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਰਵਨ ਤੋਂ, ਸਰੋਤੇ ਤੋਂ, ਸੁਰਤ ਸੁਣਨਾ, ਸੁਰਤ ਸਮਝਣਾ, ਸੁਰਤ ਜੁੜਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਚ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਸੁਰਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ, ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਰਤ ਸੁਣਨਾ, ਸੁਰਤ ਸਮਝਣਾ, ਸੁਰਤ ਜੁੜਨਾ, ਤਿੰਨ ਅਰਥ ਨੇ। ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਤਵਾ ਧਰਮੰਗ ਵਿਜਾਨਾਥੀ। ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ, ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਣੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੀਏ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ? ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਉਠੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ, ਸੁਣ ਗੁਰ ਬਚਨ ਮਨ ਤੀਰ ਲਗਈਆ। ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸਰੋਤਾ ਹੋਵੇ, कि गुरु का शब्द चोट कर जाए उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा, या फिर इनू अपनी अकल तो चोट लग जाए। इतनी अकल महान होवे कि संसार का सब कुछ छोटा हो जाए। जैसे कल मैं अर्ज की सी, गालिब कहिंदा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सब बच्चियां दा खेल है। मेरा दिल नहीं लगदा, मेरे सामने सब कुछ कुछ नहीं, ये सब कुछ है। जिवें पंजाबी च कहिंदे ने ए जग मिठा, अगला कहने डिठा, ये बड़ी मोटी अकल दी पहचान है। चलो मैं दो नुक्ते थोड़े सामने रखा। पहला, मुगल सम्राट जिसने भारत देच मुगलिया सल्तनत दी बुनियाद रखी, बाबर। बड़ा जाबर सी, जालम सी। गुरु नानक ने ते उसके मुंह देते कह दिता सी, तू बाबर नहीं है, जाबर है। पाप की जंजले काबलों धाया, जोरी मंगे दानवे लाल। हिम्मत है धन गुरु नानक देव जी महाराज ते। बाबर कहिंदा है, रोजो नो बहारो मैं व दिल रूबा खुशस्त, बाबर ब ऐश कोश के आलम दोबारा नेस्त। कहिंदा है, खा ले पी ले रंग मान ले, जगत दिच नित नवा रस नित नवा रंग, जद मौजूद है तो निराश होने की की लोड़ है, उदास होने की की लोड़ क्यों होई है। बाबर ये मोटी अकल की पहचान है। जिन्हां जिन्हां कोल मोटी अकल आउंदी ओह इही कुछ कहिंदे ने, इह जग मिठा अगला कंजिठा, छड्डो अगले दी गल, इस जगत दी कोई गल कर। रोजो नो बहारो मैं व दिल रुबा खुशस्त, बाबर ब ऐश कोश के आलम दोबारा ने, ऐ दुनिया फिर नसीब होनी है, इतना रंग इतना रूप इतना रस, उदास क्यों होई है, क्यों निराश होई है। नित नवा रस नित नवा रंग नित नवा रूप, बाबर ये ओदी सोचनी है। इन्हें मुगलिया सल्तनत दी बुनियाद भारत विच रखी, जिस दे नाल मुगलिया सल्तनत खत्म हुई, जिस बादशाह दे हत्थों, वो आखिरी मुगल सम्राट सी बहादुर शाह जफर। अंग्रेजा ने इदे कोलों दिल्ली दा तख्त खोया और इनू पकड़ के रंगून दी जेल विच बंद कीता। ये मरिया भी रंगून दे च, इहदी कबर भी रंगून दे च। ये फकीर तबीयत बंदा सी, इहदी सभा विच अमीर मिनाई, उस्ताद जौक, मिर्जा गालिब, मुला नारायण, इस तरह के बुलंद पाया मनुख जो बड़ी गहरी सोचते सन, बुलंदियां दी सोचते सन, वो इहदे संगी साथी सन। बड़े स्याणे मनुख, बड़े आलम फाजल, बड़ी दूर दी सोचण वाले। ये मनुख हर वक्त अपने नाल रखदा सी गालिब नूं, जौक नूं, इमाम अमीर मिनाई नूं और हकीम मोमन खान मोमन। जिन्हां जिन्हां भी सजणा ने इन्हां जो है स्याणियां नूं पढ़िया है, पता चलदा है कि मनुख कितना उच्चा सोच सकता है, मनुख कितना गहरा सोच सकता है। गालिब ते इथे तक कहिंदा है, हर चे बर इफलाक रफ्ता रश बवद, बर जमी रफ्तन चे दुशवा रश बवद। जिस मनुख नूं आसमान दे उत्ते चलण दी जाच आ गई है, केड़ा माई दा लाल है कि जमीन दे उत्ते उहदे कदमां नूं रोके, कौन रोकेगा। हर चे बर इफलाक रफ्ता रश बवद, बर जमी रफ्तन चे दुशवा रश बवद। जिदी सोचनी इतनी उच्ची हो गई है, आसमानों नूं छूंदी है, जमीन दियां समस्यावां उहदे पैर नहीं रोक सकदियां, संसार दियां उलझना उसनूं नहीं रोक सकदियां। इतनी वड्डी गल वो करदा है। और ऐसे विद्वान पुरुषां दी संगत दे चरेंदा से बहादुर शाह जफर इबादत करदा से नाम जपदा से तस्वीर फेरदा से तो जेड़ा बंदा इतना कुछ करे ते समझदार भी होवे तो कुदरती गल अपने नेड़े आएगा और अपने नेड़े कौन आउंदा है जो सब तो निराश हो जाता है उदास हो जाता है। बहादुर शाह दी एक नजम जो जगत प्रसिद्ध होई विद्वाना दी दुनिया च शायरां दी संगत करदियां करदियां विद्वाना दी संगत करदियां करदियां खुद विद्वान हो गया सी और खुद बुलंद पाया शायर हो गया। कहिंदा लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, मेरा दिल नहीं लगता, ये संसार एक उजाड़ है और कुछ भी नहीं। मैं उस दिन अर्ज की थी गुरु अर्जन देव जी महाराज की कहते ने महाभयान उद्यान नगर करवाया, कहिंदा बहुत वड्डा शहर है महाराज, कहिंदा बहुत वड्डी उजाड़ है कुछ भी नहीं है। मनुख मनुख नाल टुटिया होया, मनुख का मनुख नाल संबंध नहीं, भरा का भरा नाल संबंध नहीं, पति पत्नी दे विच दराड़ां पईयां होईयां ने, बच्चियां ते मां बाप दे विच दराड़ां पईयां होईयां ने, पड़ोसी का पड़ोसी नाल कोई मिलना नहीं, मनुख ते मनुख नाल टुटिया होया है, केड़ी गल दा शहर है, उजाड़ है, बिल्कुल उजाड़ है। महाभयान उद्यान नगर कर मानिया, झूठ समग्री बेक सच कर जाने। जफर कहिंदा है लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, इस उजाड़ विच मेरा दिल नहीं लगता। उजाड़ किसनों कह रहे हैं, सारे संसार नूं। किसकी बनी है आल में ना पाएदार में, इस कच्ची जमीन विच पक्की जिंदगी किसनों मिली है। इस नासवंत संसार विच सदीवी सुख कदीमी सुख किसनों मिले है, कायम दायम किसनी दुनिया होई है। किसकी बनी है आल में ना पाएदार में, अगां चल के कहिंदा है उम्रे दराज मांग कर लाए थे चार दिन, कहिंदा खुदा तो मैं बड़ी लंबी उम्र लेके आया, किन्नी चार दिन। उम्रे दराज मांग कर लाए थे चार दिन, दो आरजू में कट गई दो इंतजार में, कहिंदा दो दिन लंघ गए इच्छावां कर दे कामनावां कर दे, ते दो दिन लंघ गए उड़ीक कर दे इच्छा अज पूरी होवेगी कल पूरी होवेगी, अज पूरी होवेगी कल पूरी होवेगी, की पूरी होनी सी असी खत्म हो गए। ध्यान नाल सुनना, सारियां इच्छावां किसे दियां नहीं पूरियां होंदियां, इस चक्कर च ना पैना। इसे वास्ते कह दिता है आसा मनसा सगल ते आगे, एक इच्छा पूरी हो जाए मैं दोहरा दें कम से कम दस इच्छावां नूं जन्म दे जांदी है, वो दस इच्छावां पूरियां होवन सौ इच्छावां नूं जन्म दे जांदी है, वो सौ इच्छावां पूरियां होवन हजार इच्छावां नूं जन्म दे जांदियां ने, वो हजार इच्छावां पूरियां होवन इन्नी जिंदगी नहीं है, मनुख ख्वाहिशां दे बोझ दे थले ही मरदा है। उम्रे दराज मांग कर लाए थे चार दिन, दो आरज़ू में कट गई दो इंतजार में, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे। नाम अव्यासी दे सामने सब तो जड़ी अड़चन आंदी है इच्छावां दी, मनुख कहिंदा है ए निकलन निकलन। मैं वैराग शतक राजयोगी भरतरी दा पढ़ रहा सी, भरतरी कहिंदा है मौत अज मात रमा अब तू भज आन किसे, हे कामना मैं तेनू मां कहना मैनू तू छोड़, मैनू ना तंग कर मेरे हृदय चो निकल। मौत जमात रमा अब तू भज आन किसे, तू हुण होर किसे नू पकड़ छड़ मेरा हिरदा। जो तो ये भोगन हेत भजे तुम सेव ते से, जो संसार दे भोगां दियां कामनावां करदे ने ते जिन्हां नूं संसार दे भोग चाहीदे ने तो उन्हां दे पिछे जा। मैनू छोड़, मैं ते सब कुछ छड्डी बैठा, तू मैनू छोड़। भरतरी कहिंदा राज पाठ महल माड़ियां मैं छोड़ियां ने, कामनावां नहीं छुटदियां, नहीं छुटदियां। दुखत होके कह रहे, अभ्यासी मनुख लई जिहड़ी सब तो वड्डी समस्या पैदा होंदी है जद अपने नेड़े आंदा है, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहां है दिले दागदार में। बहुत स्याणा मनुख होवे अपनी स्याणप तो चोट खा के उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा। तीसरा, यह संसार तो कोई बहुत वड्डा हादसा हो गया, चोट खा गया, निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा। हुण मैनू कहण देना, कोई पूर्ण तौर पर अजे भी निराश नहीं होया, उदास नहीं होया, तो कहना पैगा कोई गहरा सरोता नहीं है, सत्संगी नहीं है। दूसरा, ये कोई बहुता अकलमंद भी नहीं है, कोई बहुत वड्डी अकल का मालिक नहीं है, समझ का मालिक नहीं है। तीसरा, अजे संसार तो कोई इसनों बहुत वड्डी चोट नहीं लगे। इन्हां तिन्हां विचों कोई एक घटना भी घटे, मनुख निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। हुण मैं अर्ज करां, शब्द की चोट खा के जो निराश होया है, उदास होया है, ये आत्म क्रांति करेगा, खुद नूं बदलेगा, कहेगा ऐ गुरु अज तक मैं अपने ढंग नाल जीवदा रहा, हुण तेरे ढंग नाल जीवा, अपने ढंग नाल मैं जी के देख लिया कुछ भी नहीं, तेरे ढंग नाल जीवा। दूसरा, अपनी अकल तो चोट खा दी है या संसार तो चोट खा दी है, खतरा है खुद नूं बदलन दी, तां ते किधरे खुद नूं खत्म ना कर बैठे, खुद नूं बदलन दी थां ते किधरे खुद नूं भुलाण दी कोशिश ना करे, हर वक्त नशे दी जी गलतान रहण लग पए। संसार तो चोट खा के भी कुछ लोग टोटली निराश उदास होके आत्म क्रांति करते रहने, खुद नूं बदलते रहने, जैसे महात्मा बुद्ध। अपनी अकल तो चोट खा गया, सत्संगी नहीं सी, कोई सत्संग नहीं किया उसने, कोई दुख भी नहीं सी, संसार तो भी चोट नहीं लगी। राजे का लड़का और एको एक लड़का, सारे सुख साधन मौजूद, अकल तो चोट खा गए, कहिंदा कुछ भी नहीं जगत, कुछ भी नहीं। अकल तो चोट खा के भी कई लोगों ने आत्म क्रांति की थी है, संसार तो चोट खा के भी कुछ एक लोगों ने आत्म क्रांति की थी है, अपने आप को बदलने का यत्न किया है, जैसे राजयोगी भरतरी। ये सत्संगी नहीं सी, ये भी मैर्ज करा, और इन्हें अपनी अकल तो भी चोट नहीं खाधी। फिर ये योगी क्यों बने, गोरख का चेला क्यों बने, आप सुन के हैरान हो गए। प्राणायाम की साधना करके इन्हें अपनी उम्र इतनी लंबी कर ली सी, ये गुरु नानक दे वक्त मौजूद सी, साड़ी जन्म साखी ये कहती है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने भरतरी दे प्रति तीन शब्द उच्चारण किए ने आसा राग दे, सिफती रत्ता सदबै रागी जूए जन्म ना हारे, कहे नानक सुन भरतर जोगी खीवा अमृत धारे। तीन शब्द ने इसकी व्याख्या की थी, जिहड़ा मजमून मैं छेड़िया रह जाएगा, तिने शब्दों दियां दो दो पंक्तियां तुहानू सुनावां। जलते उपजे जलते दूर, ए दूजा, जलते उपजे जलते दूर, जल में जोत रिया भरपूर, सुन भरतर नानक कहे विचार, निर्मल नाम मेरा आदा। इतनी उच्ची परवाज उचियां गल्लां सुन के भरतरी दंग रहा है, क्योंकि भरतरी सतगुरु दे चरने पै गया सी। निर्माणता इहदे अंदर कुछ जानन दी बुख सी। पुछ बैठा, महाराज थोड़ा पंथ की है? क्योंकि वो ते जोगी से, वो ते गोरख पंथी से, गोरख दे मार्ग दे चलदा से, गोरख दा चेला से। थोड़ा पंथ की है? उन्हें तीजा शब्द, सगली जोत हमारी समया नाना वरन अनेकं, कहे नानक सुन भरतर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। ऐ भरतरी, साडा पंथ पुछदे सारे जगत दे भेख वरन मजहब जात पा, सारिया दे नाल चलना ते सारिया नू अपने नाल चलाना, बस नानक दा पंथ यही है। और कोई पंथ नहीं, और कोई पंथ नहीं। पंक्तियां फिर सुन लेना, सगली जोत हमारी समया नाना वरन अनेकं, कहे नानक सुन भरतर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। भरतरी सारे जोगियां दे चां बहुत गुरु नानक दे श्रद्धा रखदा सी, श्रद्धालु सी, झुकिया सी। हुण मैं अर्ज करां, भरतरी कोई सतसंगी नहीं सी कि सतसंग तो चोट खा के जोगी बनिया होवे। भरतरी ने कोई अपनी अकल तो भी चोट नहीं खाधी, ये भी मैं अर्ज करां। भरतरी नू संसार तो चोट लग गई। तुसी आखोगे राजा सी, बड़े बड़े महल धन संपदा, केड़ी गल दी कमी सी, ये अपनी पत्नी तो चोट खा गए। इदी पत्नी दा नां सी पिंगला। वैराग शतक दा जिहड़ा पहला छंद है उहदे च दसदा है मैं जोगी क्यों बनया। इत्थों ही आरंभ करदा है। इहदे तीन ग्रंथ ने, वैराग शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक। धार्मिक जगत दे च वैराग शतक प्रचलित है। पुरानियां गुरमत दियां टकसालां दे जिथे विचार माला, विचार सागर पढ़ाया जांदा सी, बिरती प्रभाकर, उत्थे वैराग शतक भी पढ़ाया जांदे सी। अज ते हुण कोई गल ही नहीं, कोई टेपां सुन लैंदा, कोई चार अखर पढ़ लैंदा, बस ठीक है, कथा चल पई। टकसालां नहीं रहियां, हुण इस तरह दा अभ्यास भी नहीं रहा। उन्हां ग्रंथां दे नाम भी खोंदे जा रहे ने जिहड़े निर्मलियां उदासियां दी टकसालां च पहले पढ़ाए जांदे सन। सारे वैराग शतक भावें मिलदा है, अमृतसर विच हर दुकान ते पिया हुंदा है, कौन लैंदा, कौन पढ़दा। वैराग शतक विच भरतरी दसदा है मैं जोगी क्यों बनया, अकल तो चोट खा के नहीं बनया। मैं कोई सतसंगी भी नहीं गहरा के गुरु दा शब्द, प्रभु दे बोल चोट कर गए, उन ते मैं जोगी बन गया। कहिंदा नहीं, फिर क्यों बनया? तो उसे दे ही बोल मैं थोड़े सामने रखा। जिन को चित मैं नित मैं चितमो, तिन की तन मो तन माए रतीना, वो आन पमान के संग रती, फुन ता मन में गन का ग्रह कीना। धृग है अबला वृद कंदर्भ पे, और मोए धिकार जो मार अधीना। इस रीत समूह की प्रीत तजी, निरप होए जोगेश्वर ईश्वर चीना। जिन को चित मैं नित मैं चितमो, तिन की तन मो तन माए रतीना। जो मेरे चित दे च हर वक्त रहिंदी सी पिंगला, मेरा हिरदा हर वक्त उसनों याद करदा सी, उदी याद तो मेरा हिरदा कदी खाली नहीं होया। भरतरी इंज कहिंदे ने। पर कहिंदा करां कि मेरे चित दे च हर वक्त ओ वसी होई, ओदे चित दे च मैं नहीं सी। इत्थों चोट खा गए। ध्यान नाल सुनना, जिन को चित मैं नित मैं चित मो, तिन की तन मो तन माए रतीना। वो आन पुमान के संग रती, पुन तामन में गन का ग्रह कीना। गन का वेसवा नु कहंदे ने। उहदे चित दे च कुछ होर हैगी, ते राणी सी गनका बनी हुई। उन्हें गल छुपाई नहीं मैं जोगी क्यों बनया। महान पुरुष की जद हिरदा निर्मल हो जाता है उन्हों अपनी कमजोरियां कबूल करने दे कोई संकोच नहीं आता, वह पढ़ते भी नहीं पाता, वह छुपाता भी नहीं। यह भी महसूस करता यह हकीकत है, ना परमात्मा दे कोलों छुपाता है ना जगत कोलों छुपाता है। इस संबंध च भी मैं थोड़े सामने किसी वक्त खोलांगा गल कि करीबन करीबन भगत जब अपने आप को पेश करते हैं अपनिया बड़िया कमजोरिया का जिक्र करते हैं। ये खोलांगा किसी वक्त, काले मेडे कपड़े काला मेडा वेस, गुण ही भरिया मैं फिरा लोक कहन दरवेस, पावें फकीराना मेरे कपड़े ने काले कपड़े ने सूफी पहनते हैं पर मैं तो गुनाहा नार भरे होया उपरों फकीर दिसदा पिया। बाबा फरीद जिन को चितमै नितमै चितमो तिन की तन मो तन माय रतीना, वो आन पुमान के संग रति फुन तामन में गन काग्रह कीना, दृग है अब ला ब्रिद कंदर्ब पे और मोए धिकार जो मार अधीना। कहिंदे लानत है ऐसी औरत ते जिसका पति सम्राट है राजा है छत्रपति, ते ओ हिरदे दे च कोचवान नू जो उन्हां दा रथ चलांदा सी रथ ड्राइवर कोचवान नू हिरदे च रखदी है, लानत है। फिर कहिंदे उस कोचवान ते भी लानत है, नमक हराम है, मालकन ते मालक दे घर उसने डाका डाले। फिर कहिंदे नहीं मेरे ते भी लानत है। ये हिरदा बनया सी परमात्मा दी याद वास्ते, मैं उन्हों एक पासे करके उन्हों हिरदे च रखे। कहिंदे मेरे ते भी लानत, ओए मोए धिकार जो मार अधीना मेरे ते भी लानत, बहुत वड्डी गल है। धृग है अब ला ब्रिद कंदर्ब पे और मोए धिकार जो मार अधीना। अखीर दिच कहिंदा है इस रीत समूह की प्रीत तजी, निरप होए जोगेश्वर ईश्वर चीना, ऐ रीत मैं छड़ देती क्यों ये प्रीत झूठी है जगत में झूठी देखी प्रीत, ये कुछ भी नहीं है, ऐ रीत मैं छड़ देती। निरप होए जोगेश्वर ईश्वर चीना, कहिंदा हैगा ते मैं निरप राजा जोगी हो गया। हुण ईश्वर दा चिंतन करना, हुण हिरदे दे विच मैं रब नूं वसाण दा यतन करदा, उहनूं याद करदा, हिरदे चों कढ़िया राणी नूं हिरदे ते चों वसाण दा यतन कर रहा रब नूं परमात्मा नूं। इस रीत समूह की प्रीत तजे, निरप होए जोगेश्वर ईश्वर चीना, इस संसार तो चोट खाके परमात्मा दी तलाश ते चले। महात्मा बुद्ध अकल तो चोट खाके प्रभु दी तलाश ते चले। लेकिन आम हालत विच ऐसा हुंदा है महानता शब्द दी चोट लग गई है सत्संगी है ते निराश होके उदास हो गए। अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुर बचन मन तीर लगैया, मन की बिरथा मन ही जाने अवर के जाने को पीर परैया। इहदे च खतरा नहीं क्योंकि शब्द दी चोट जिसनों लगी है वह आत्म क्रांति करेगा अपने आप नूं बदलेगा, पर अकल तो चोट जिसने खादी है संसार तो चोट खादी है दो खतरे ने। हो सकता है आत्म क्रांति ना करे, आत्महत्या कर बैठे सुसाइड कर बैठे, हो सकता है अपने आप नूं बदले ना बल्कि खत्म करे अपने आप नूं, या अपने आप नूं भुलाण दी कोशिश करे। गालिब जैसा सियाणा मनुख जो कहिंदा है दुनिया एक बच्चियां दा खिडौना प्रतीत आउंदी है, दिन रात शराब दे डुब के रह गया, दिन रात बड़े कीमती बोलने होंदे और मुतस्बी भी नहीं सी मुसलमान होंदा होया। कहिंदा है असल धर्म की है वफादारी बशर्ते अस्तवारी, असल ईमान है, असल ईमान की है भरोसा विश्वास, भरोसा नहीं व्यक्ति कितना धर्म का कर्म कांड करे धार्मिक नहीं है। बड़ी कीमती गल करता है। जाके हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान ते समान प्रगट आया। गालिब कहिंदा वफादारी बशरते अस्तवारी, अस्तवारी कहिंदे पुख्ता पक्के, वफादारी बशरते अस्तवारी, असल ईमा है मरे बुतखाना में ब्राह्मण जागाड़ो काबा में। मूर्तियां देच भी भरोसा पूरा सी ते पूजा करदा रहे और पूजा करदा मर गया, कहिंदा इहदी कबर मक्के देच बनाओ, मुहम्मद साहब दे कोल बनाओ और उत्थे उसनूं पूजो, क्योंकि असल ईमान यही है कि इहदा फेथ डोलिया नहीं, इहदा भरोसा डोलिया नहीं। इन्नी कीमती गल करदा, इतनी बारीक गल करदा, इतनी बारीक इसकी सोचनी, पर दिन रात नशे विच डुब गया। समाप्त मैं करा। इसकी बेगम एक दिन कहन लगी, मिर्जा किसी वक्त ते होश च आया करो, तुसी सभा दे शिंगार बहादुर शाह दे निकट, दुनिया थानू आलम फाजिल कहिंदी है, दुनिया थानू रोशन दिमाग कहिंदी है, तुसी दिन रात नशा करके अंधेरे च रहिंदे हो, तुसी रोशन दिमाग जगत नू चानना देण वाले नशा करके दिन रात अंधेरे च रहिंदे हो। पता है गालिब ने की आख्या, जद चानना हुंदा है ना ते तू भी मिट्टी दा खिडौना प्रतीत आउंदी है। तू बेगम मैनू दिखाई देनी है अंधेरे च अज्ञानत च, जद मेरी अकल कम नहीं कर दे तो मैनू बेगम दिखाई देनी है, चंगी लगनी है। जद मेरी अकल कम कर दी है, चानना हुंदा है तू मिट्टी दा बुत दिखाई देनी है, मिट्टी दा खिडौना। हुण तू आप दस, बेगम बन के रहना ही कि मिट्टी दा खिडौना बन के रहना है। गालिब और गालिब जारो जार रोण लग पिया, कहण लगा मिट्टी दे खिडौणियां नाल मैं खेड नहीं सकदा, इस तो उच्ची दुनिया दी मैनू प्राप्ति नहीं, तो मैं की करा की करा। परेशानियां सारे जहां की समेट कर, जब कुछ ना बना तो मेरा दिल बना दिया। मैं तो इतना बेचैन, कुछ भी नहीं जगत दे जिदे आसरे ते मैं जीवा। ऐसा परेशान बेचैन मनुख सियाणप दी इंतहा नू छोया है, लेकिन एक खतरा है, ऐसा मनुख अपने आप नू भुलाण दा यतन कर सकदा है। 99% उर्दू दे शायर, हिंदी दे कवि, पंजाबी दे कवि गुस्साखी माफ शराबी ने, कोई कवि बैठा हो माफी मैं पहले मांग लेना, 1% वो अपने आप नू समझ ना वे शराबी ने। सियाणा मनुख, बहुत सियाणा मनुख या अपने आप नू भुलाएगा या अपने आप नू खत्म करेगा। हकीम मोमन खान मोमन, हिंदू कहिंदे ने इहदे बोल उपनिषदां वर्गे ने। हकीम मोमन खान मोमन पता की कहिंदा, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर जाइए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है जब की मिट्टी दे खिडौणियां नाल खेडना। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, पर मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। कहने एक ख्याल मैनू मरण नहीं दे रहा, खुदकशी नहीं करण दे रहा, मर के भी मैनू चैन ना मिलिया फिर मैं की करांगा। लेकिन मरण दी ते सोची है उसने, इतने सियाणे मनुख ने। बहादुर शाह जिसनों सलाम करदा है सजदा करदा है, वो कहिंदा है मैं खुदकशी करण दी सोच। उदास ते निराश मनुख या ते अपने आप नू बदलेगा या अपने आप नू खत्म करेगा या अपने आप नू भुलावेगा। पर शब्द की चोट जिसने खादी है वो अपने आप नू खत्म नहीं करेगा, अपने आप नू भुलावेगा भी नहीं, बदलेगा। ऐ गुरु हुण मैं तेरे ढंग नाल जीवना है। तू अमृत वेले उठण नू कहिंदा, मैं अमृत वेले उठांगा। ਤੂੰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਜਪਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਪਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੀ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੈਂ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਹਰੀ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੜੀ, ਇਹ ਲੜੀ ਫਿਰ ਕੱਲ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੈ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲ ਸੁਖ ਦੀ ਸ਼ਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਯੂ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ KRPI 1550 ਰੇਡੀਓ, ਫਰਨਡੇਲ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ।
2: ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ। ਰਾਜਨ ਮੈਂਗੋਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਗੋਜ਼ ਹੁਣ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 11 ਜੂਨ ਤੋਂ 17 ਜੂਨ ਤੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਰੈਗੂਲਰ ਓਕਰਾ ਲਵੋ 2.49 ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ, 10 ਪਾਉਂਡ ਸਨੋ ਬੋਏ ਰਸਲ ਪਟੇਰੋਸ 2.98 ਦਾ ਬੈਗ, ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ 2.98 ਦਾ ਇੱਕ, ਅਤੇ 4 ਪਾਉਂਡ ਇੰਡੀਕਨ ਸਾਬਤ ਲਾਲ ਮਸਰ ਲਵੋ 2.98 ਦਾ ਬੈਗ।
3: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudel Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudel Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudelbaudgroup.com.

0: रूडी कैना दी नवी लोकेशन साउथ सरी विच जल्द ही खुलन जा रही है 2982152 स्ट्रीट। इस हफ्ते दे स्पेशल हन 11 जून तो 17 जून तक। धनिये दियां दो गुच्छियां 1.25 नू, ताजा अदरक लवो 98 सेंट्स नू पाउंड, बिना बीज वाला हदवाना 78 सेंट्स नू पाउंड, अते पालक लवो 1.29 दी गुच्छी।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: The Surrey Crime Prevention Society is looking for new volunteers. Report suspicious activities in your neighborhood with the Citizens Community Safety Watch program, or take part in community safety tours by observing local malls, parks, transit hubs, rec centers, and libraries. Help keep our roads safe with the Speed Watch program, or adopt a street and help our neighborhoods become anti-graffiti communities. The Surrey Crime Prevention Society also needs volunteers for the office, special events, youth mentors, and students. PreventCrime.ca, an initiative of Pulse FM Cares.

सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी से भंग गुर प्रसाद हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे गुरु रूप सत्संग जी पते प्रवान करने वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सो दर कहा सो घर कहा जित बह सर्व संभाले। ओ दर कैसा है ओ घर कैसा है हे प्रभु जिथे बैठ के तो तमाम ब्रह्मंड दी जीवां दी संभाल करदा। फिर सतगुर रामकली राग विच ऐसा कहंदे ने राम कली मल्ला पहला जित दर वसें कवन दर कहिए दरां भीतर दर कवन लहे जिस दर कारण फिरां उदासी सो दर कोई आए कहे सारे दरां तो उदास होके निराश होके जिस दर्दी मैं तलाश कर रहा कोई दसे कोई ते दसे। एक हकीकत है जितने चिर तक संसार दी प्यास बड़ी प्रबल है निरंकार दी प्यास पैदा ही नहीं होती। जितने चिर तक पदार्थां दी भुख बड़ी प्रबल है परमात्मा दी भुख पैदा ही नहीं होती। ऐसा क्यों हो जाता है? दरअसल शरीर दियां जिहड़ियां लोड़ां ने उन्हों मन अपनियां लोड़ां बना लैंदा। कुछ लोड़ां शरीर दियां ने पर उन्हां लोड़ां नाल मन अपने आप नूं जोड़ लैंदा है तो लोड़ां लोभ बन जांदियां है। तो फिर लोभ दी कोई सीमा नहीं है कोई सीमा नहीं है। गुरबाणी दी जो बारीकियां ने मैं आप जी दे सामने रख रहे हां जिस दिन सच्चे नाम दी भुख पैदा हुई साचे नाम की लागे भूख तो समझ लेना जिहड़ी झूठ दी भुख सी वो शांत हो गई। झूठ किसनों कहंदे ने जो है ते नहीं हो जांदा उन्हों मिथ्या कहंदे ने है पर नहीं हो जांदा। बचपना है सी नहीं हो गया जवानी है एक दिन नहीं हो जाती बुढ़ेपा है एक दिन नहीं हो जाता ये जीवन है एक दिन नहीं हो जाता। इन्हां अखां नाल जो कुछ भी दिखाई देता है जो है वो नहीं है दे बदल जाता है उन्हों मिथ्या कहंदे उन्हों झूठ कहंदे कूड़ सब संसार।
जितने चिर तक उसकी प्रबल भुख है, परमात्मा की भुख पैदा ही नहीं आती। संसार दियां लोड़ां ने और लोड़ां इस तन दियां ने, पर उन्हां लोड़ां नाल मन अपने आप नूं जोड़ लैंदा, तो फिर लोड़ां लोभ बन जांदियां ने और मन की यात्रा रुक जांदी है। ऐसा नहीं कि मन टिक जांदा है, मन गर्दिश दे च रहिंदा है, वो सही गर्दिश दे च, जिन्हों घूमण घेरी कहिंदे ने, जिन्हों चक्कर कहिंदे ने, और मन सीधे रस्ते तो भटक जांदा है। तन पदार्थ है, पदार्थां तो बने है, मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण ये पदार्थां तो नहीं बनेगा, ये सीधा जोत स्वरूप है। खैर, हुण मैं मूल गल आप जी दे सामने आरंभ करा। अनंत काल तक जो धुंध सी, ये पूरा खुलासा आप सरवन कर रहे हो, अरवद नरवद धुंधु कारा, धरण न गगना हुकम अपारा, नांद न रैन चंद न सूरज, सुनने सुन समाद लगाएना। ये दास ने काफी खुलासा थोड़े सामने किया है, धुंध ही धुंध से। उसे धुंध दे एक धमाका होया, आवाज हुई, एक कवाओ होया, एक बोल होया, कीता पसाओ एको कवाओ। तो वो कवाओ की से, वो ब्रह्मंड दी पहली आवाज से, पर वो आवाज की से कलगीधर कहिंदे ने ओ अंकार आद कथनी अनाद, अनादि कथनी पहली आवाज की सी ओ अंकार। इनू कबीर भी कहिंदे ने ओ अंकार आद मैं जाना, लिखिया रमेटे ताए नवाना। इनू धन गुरु नानक देव जी महाराज ते बड़ी लंबी चौड़ी बाणी च बयान करदे ने, और उस बाणी दा नाम भी है ओ अंकार। ओ अंकार ब्रह्मा उत्पत, ओ अंकार किया जिन चित, ओ अंकार सैल जुगवै, ओ अंकार वेद निर्मय। हुण इस दे च मैं थोड़ा समा ना लवां, क्योंकि मैं सारा खुलासा कर बैठा। इस धुन तो अरबां खरबां सूरज पैदा है, पहले सूरज नहीं सी, ना दिन रैन चंद ना सूरज, सुनने सुन रहा है ना, दिन सी ना रात सी, ना सूरज सी ना चंद्रमा सी, ना ये जमीन सी ना आसमान सी, ना दिन रैन चंद न सूरज, सुनने सुन रहा है। अरबद नरबद धुंधु कारा, धरण न गगना, ये धरती नहीं सी, गगन भी नहीं सी, ये ग्रह नक्षत्र तारे स्यारे नहीं सी। इस धुंध दे एक कवाओ होया, कवाओ ओवंकार, उस तो अरबां खरबां सूरज बने, एक एक सूरज दे कई कई टुकड़े, धुंध पानी बन गई, ए धरण ए धरती सूरज दा टुकड़ा। समा पाके जद ठंडी होई तो ए फिर पत्थर दे रूप दिच प्रगट हो। संसार दिच आकार पहले पत्थर दा बनया, पत्थर लखां साल दी लंबी यात्रा तो बन मिट्टी बन बनस्पति बनया, बनस्पति लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद पशु पक्षियां दी शक्ल दे प्रगट होया, और पशु पक्षी लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद जिस रूप दे प्रगट होए उन्हों मानव कहिंदे ने, मनुख कहिंदे। चूंकि मनुख उन्हां सारियां तो लंघ के आया है, तो कुछ ना कुछ संस्कार सारियां दे इहदे विच हैगे। पत्थरां तो लंघ के आया है, बनस्पति तो लंघ के आया है, पशुआं तो लंघ के आया है, मनुख बने। मैं एक मिनट लवां, पत्थर टोटली सुत्ता होया है तो सुते हुए की कोई लोड़ नहीं आती, पत्थर की कोई लोड़ नहीं। पत्थर जब मिट्टी बन के बनस्पति के रूप में प्रगट होया है, तो थोड़ी जिया बनस्पति जागी उदी लोड़ है, पानी उदी लोड़ है, प्यास लगती है। बनस्पति
लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद जिस रूप विच प्रगट होए वो पशु पक्षी इन्हां नूं निरी प्यास ही नहीं लगती, भुख भी लगती, इन्हां कोल आवाज भी है। और पशु लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद मनुख दी शकल विच प्रगट होए, मनुख कोल भुख प्यास ते है, आवाज भी है, पर आवाज दे कोल अल्फाज भी ने, अक्खर भी ने, पशुओं कोल नहीं ने। और मन इस मानव दा पशुआं नालों बनस्पति नालों ज्यादा जागे। मनुष्य दा मतलब भी है जिदे कोल मन है, मन रखदा है, जो विचारां दा प्रवाह रखदा है, सोचनी दा प्रवाह रखदा है, यादां दा प्रवाह रखदा है, चिंतन दा प्रवाह रखदा है, मानुष मनुख। मनुख तो पिछे ने पशु, पशुआं तो पिछे है बनस्पति, बनस्पति तो पिछे है पत्थर आकार रूप दे। इंज कह लो वो सारे ही पशु ने, पशु दा मतलब जो पाश देच ने, पछड़े हुए ने, पिछे ने। इना पशुआं देच चौपाए जानवर पंछी, इना पशुआं देच बनस्पति, इना पशुआं देच पत्थर। प्रकृति चलांदी रही, प्रकृति दे अखरी अर्थ ने नेचर नहीं ने, इहदे अर्थ जो इंग्लिश दे च नेचर कर लेंदे ने नहीं, पर कृत, कृत तो पहले, तो कृत तो पहले ते करता है, ये सब कुछ करते तो चलता है, करते पुरुख तो चलता है। कर्ता पुरुख की है एक महाचानन है, प्रकाश है, उसे तो अरबां खरबां सूरज होए। परमात्मा सूरजां दा महासूरज है, नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे। परमात्मा तो अनंत सूरज होए, सूरज तो ही अनंत धरतियां होईयां, पत्थर होए, वनस्पति होई, पशु होए, मानव होए, प्रकृति चलांदी रही। ऐसा भी सी किधरे तन अगे लंघ गया, मन पछड़ गया, किधरे मन अगे लंघ गया, तन पछड़ गया। जैसे कुछ हाथी गऊ मोर हंस मन ते उन्हां दा अगे चला गया, कुछ एक दा समझ ज्यादा है, पर तन पिछे रह गया अजे पशु ने, पशु ने। किधरे किधरे तन ते अगे लंघ गया, मनुष्य बन गया, मन पछड़ गया, तो मन दे तलते अजे भी पशु ने, उन्हां नूं ही सतगुरु कहिंदे ने करतूत पशु की मानस जात। तन मनुख दा है, दिखाई मनुख देंदे ने, मनुख नहीं है अजे। इन्हां दा मन इतना विकसित नहीं कि समझ सकन, सोच सकन। अजे पशु ने, अजे ना समझना है। हुण मैं अर्ज करा, चूंकि पत्थरां तो मनुख लंघ के आया है, तो पत्थरां दे अंदर संस्कार ने। बनस्पति तो मनुख लंघ के आया है, तो बनस्पति दे अंदर संस्कार ने। पशुआं तो मनुख लंघ आया है, तो पशुआं दे अंदर छाप है, स्वभाव है, संस्कार अंदर स्वभाव ने, संस्कारां दा संग्रह ही स्वभाव बन जांदा है, वो स्वभाव है। ये सत्संग, ये कथा कीर्तन, ये वाहिगुरु मंत्र दा जप उन्हां संस्कारां नूं धोणा है, कढ़णा है। जिस दिन अंदरों सारे पशुआं दे स्वभाव संस्कार निकल जांदे ने, उस दिन असली मनुखता प्रगट होंदी है। लोकी कह देंदे ने इहदे अंदर इंसानियत दा मादा है, मनुखता दा मादा है। फिर एक दिन ऐसा आंदा है, जप करदिआं करदिआं ये मनुख मनुखां तो भी अगे चला जांदा है। तुसीं आखोगे अगे किथे चला जांदा है, फिर उन्हों कहिंदे ने मनुख नहीं, ये ते देवता है। जिन मनुख ते देवते की है, करत न लागी बार, ये देवता हो गया, इहदा दीवा जल गया, दीपक जल गया। इहनूं निरा संसार नहीं दिखाई देंदा, संसार विच निरंकार दिखाई देंदा। इहनूं पदार्थां विच परमात्मा दिखाई देंदा।
ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਦੇਵਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਇੱਕ ਮੰਦਰ, ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਨੇਰਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਾਨਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, 5:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੌਣ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੀ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਭਵਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਹੋ, ਭਵਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਦਾ। 21-22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦਿੱਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ 21-22 ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਭਵਿਸ਼ ਆਪਣਾ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 21-22 ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਵਿਸ਼ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸ ਦੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭਵਿਸ਼? ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਵ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਫੋਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਜੂਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਦਬਖਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਬਦਬਖਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚ ਦੱਸਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਬੋਸਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਬਦਬਖਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਦਕਿਸਮਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਰ ਇਨਸਾਫ ਪੁਰਸੀ ਬਦ ਅਖਤਰ ਕਸ ਅਸਤ ਕੇ ਦਰ ਰਾਹ ਤਸ਼ ਰੰਜ ਦੀ ਗਰ ਕਸ ਅਸਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੰਜ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਰੋਣੇ ਦੇ ਚੋਂ ਹਾਸੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਬਦਬਖਤ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਬਦਬਖਤ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇਗਾ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ, ਹਰੀ ਦਾ ਭਗਤ ਅਭਿਆਸੀ।

0: पत्थर चमक गए, पत्थरा चमक पैदा हो गई। मनुख हो के हृदय चानना नहीं आया, पत्थर चमक गए ने, हीरे चमक जाते ने। कोहो नूर हीरा जिहड़ा इंग्लैंड दे पिया उहदे ते रोशनी है, ते हीरा है। खैर मुक्तसर मैं अर्ज करा, मन जिस दिन पूरा जाग जाए तो हीरे की ने ते गऊ की है, चंदन की है, मनुख का मन परमात्मा हो जाता है, ईश्वर हो जाता है। बिगड़ियो कबीरा राम दुआई, साच भयो अन कदे न जाए, नानक लीन भयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। हुण मैं अर्ज करा, जितना मन किसे दा जागया है इंसानियत उस दे च उतनी है, उस तो ज्यादा नहीं है। जिड़ा अचेत भाग मन दा है वो पशु होवेगा, बनस्पति होवेगा, पत्थर होवेगा। बड़ा कठोर व्यवहार है, बड़े सख्त बोलने, दिल बड़ा पत्थर है। अजे पत्थरां दे संस्कार बड़े प्रबल ने, थोड़ा जिहा जागा बाकी सुत्ता पिया जिवें पत्थर सुत्ता होया। पत्थर पूरन सुत्ता होया, परमात्मा पूरा जागे होया। सुते दी यात्रा है जागे, प्रकृति पत्थर नू थोड़ा जगांदी है बनस्पति दे रूप च, होर थोड़ा जगांदी है पशु पक्षियां दे रूप च, ते प्रकृति जगांदी है पशु पक्षियां नू मनुख दे रूप च, ते मनुख नू खुला छोड़ देता है हुण तू आप जाग। मेहनत कर, यतन कर, क्यों हर चे जूद बरायद देर ना पायद। जिहड़ी चीज छेती मिल जाए बिना मेहनत दे मिल जाए मनुख कदर नहीं करता, नहीं करता। प्रभु दा नियम ए मेहनत करे, जिन्ने नाम दे आया गए मुशक्कत घाल, गालना गाले, गालना घाल घाल के कुछ मिले, कुछ प्राप्त हो गए। कारण मैं फिर अर्ज करा, जिहड़ी चीज मुफत दे च मिल जाए बिना मेहनत दे मिल जाए मनुख कदर नहीं करता। होती तो प्रभु दा ये नियम परमात्मा ने खुला छोड़ देता है मनुख नूं। मनुख चौराहे ते खड़ा है, अगर अग्गे चला गया तो परमात्मा बनेगा, पछड़ गया तो ये पशु बनेगा। शरीर दा अंत होया ते अजे जन्म नहीं होया, सज्जे चला गया ते देव बनेगा, एक पवित्र रूह भटकदी रहेगी। खब्बे गया तो एक मलीन रूह है, इनू भूत प्रेत कहिंदे ने, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गा। सुखमनी साहब, 6 अरब दे करीब इस वक्त जमीन दे उते मनुख ने, तो इतनियां ते रूहां समझ लेनियां चाहीदियां ने ब्रह्मंड दे च हैं। चंगियां नू देव कहिंदे ने, माड़ियां नू भूत प्रेत कहिंदे ने। और धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी इसका जिक्र करते हैं, कहूं जच गंधर्व उरग, कहूं विद्याधर, कहूं भय किन्नर पिसाच, कहूं प्रेत पिसाच, भूत प्रेत पिसाच। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, कई कोट भूत प्रेत सुकर मिर्गाज। सूक्ष्म शरीर जद इस अस्थूल शरीर दे चो निकलता है, सारे संस्कार उसे दे चो दे, चंगे ते माड़े उन्हें ही संस्कारां दे मुताबक अगे जन्म आउंदा है। लेकिन बहुत माड़े संस्कार ने, जिवें हिटलर, मोसोलिनी ने, चंगेज खान, हलाकू, औरंगजेब, हरनाकश, इन्हां नूं छेती जन्म नहीं मिलदा। इन्ने माड़े संस्कार, पत्थर दिल पत्थर दिमाग, कोई बिल्कुल कसायण ते डायण मां होवे उहदे राहीं इन्हां दा जन्म होएगा, उंज नहीं होएगा। दूसरे देव ज्ञानी सन, जप करते सन, तप करते सन, परमात्मा तक नहीं पहुंच सके, मुक्त नहीं हो सके। जिमें 100 मील की वाट होवे, 90 ते तय कीती सी, पर शरीर का अंत हो गया, सूक्ष्म शरीर ते अस्थूल शरीर का संबंध टुट गया, तो यात्रा ते विचे रह गए। इस तरह के सूक्ष्म शरीर अति पवित्र होंदे, इन्हां नूं देव कहिंदे ने, इन्हां दा भी जल्दी जन्म नहीं आउंदा। क्यों? बिल्कुल देवी मां चाहिए, पवित्र गोद चाहिए, संस्कारां दे अनुकूल चाहिए, तां जन्म होवेगा, उंज नहीं होवेगा। ये प्रकरण अलग है, किसी वक्त मैं खोलांगा। अज ते जो कुछ मूल गल है वह थोड़े सामने रखा। आम साधारण मनुख 10-12-13 दिनों के अंदर जन्म ले लेंदे ने, कई तो इधर मरे इधर किधरे गर्भ दे प्रवेश कर गए। आम साधारण मनुख, साधारण तो मुराद की ही ना देवता बन सके, ना पशु बन सके, ना अगे गए ना पिछे गए, उत्थे ही रहे। समाज दा भय, कानून दा भय, गलत नहीं करते रहे, बस मनुखां दी तरह जीवे, अगे नहीं जा सके। मौत हो गई है, इन्हां दा छेती जन्म होंदा है। आम साधारण सूक्ष्म ढांचे बड़े छेती जन्म लेंदे, असाधारण विशेष जल्दी जन्म नहीं लेंदे। इन्हों इकबाल ते इंज कहिंदा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूर ही पेरोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कदी कदी मनुखी गुलिस्तान विच कुछ ऐसा फुल खिड़दा है जो मनुखता नूं मुअत्तर कर देंदा है, बागो बाग कर देंदा है, कोई नवी क्रांति लैंदा है, पर कहिंदा हजारां साल उड़ीक करनी पैंदी। बड़े लंबे समय तक ये देव उड़ीक करते ने, इस देह को सिमरे देव याद करते ने, सानू जन्म मिले, पर हर गोद दे राही नहीं आना चाहते। जिमें बंजर जमीन दे गुलाब नहीं पैदा होंदा, घास कंडे पैदा हो जाते, हो जा गुलाब नहीं पैदा होंदा, चंदन नहीं पैदा होंदा। हर गोद देवते नू जन्म नहीं दे सकती। अजोका समाजिक जीवन इतना भ्रष्ट हो गया, गुस्ताखी माफ, इतना मैला हो गया है। गुरु नानक देव जी महाराज एक दो शब्द उच्चारण कर रहे हैं, सामने आ गए ने, हुण मैं कह ही रहा। कल्ली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार, पुत जनूरा धी जनूरी जोरू जिन्ना दा सिगदार। इस कलयुग दे इस दौर दे जिन्ना दा जन्म हो रहा है, भूत प्रेतां दा जन्म हो रहा है। गुरु नानक पुत जनूरा धी जनूरी, पुत जिन भूत है ती भी जिन भूत है। कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार, पुत जनूरा ती जनूरी जोरू जिन्ना दा सिकदार। ये जिन भूतां दा जन्म क्यों हो रहा है? महाराज कहते हैं समाजिक जीवन भ्रष्ट हो गया है। किस तरह भ्रष्ट हो गया है? तो सतगुरु दसते ने, रन्ना होइया बोधिया, पंक्तियां ना आंदिया, बाणी ना आंदी, तो मैं कहना भी नहीं सी ग्रस्ते आदमी मैं, हमें कोई दिल तोड़न वाली गल नहीं कर रहे, पहले पातशाह दे बोलने। रन्ना होइया बोधिया, पुरख होए सयाद, सील संजम सुच बन्नी, खाना खाज अखाज, शर्म गई घर आपने, पत उठ चली नाल, नानक सच्चा एक है अवर न सच्चा वाल। इसरी ते शरीर दी नुमाइश दे च लग गई बोधिया, चंचल अत्यंत चंचल हो गई, उते शरीर की प्रदर्शनी करना चाहती है। यूरोप की स्त्री तो इंज कह लो कम से कम 80% नगन हो गई, शरीर की प्रदर्शनी करनी है, शरीर की नुमाइश करनी है। नक्शे कदम से बाकी दुनिया भी चल पी है, एशिया भी चल पे है। रन्ना होइया बोधिया, पुरख होए सयाद, ये पहले पातशाह जी दे बोले। सयाद फारसी का लफ्ज है, पुरुष शिकारी ने देखना चाहते, इस तरह का फैशपना देखना चाहते, ये तो शिकारी ने। तो स्त्री इतनी चंचल और नुमाइश करना चाहती है। सील संजम सुच बन्ने, कोई शील नहीं रहा, सील संजम सुच बन्ने, खाना खाज अखाज, शर्म गई घर अपने, पत उठ चली नाल, नानक सच्चा एक है अवर न सच्चा। शर्म हया तो पता नहीं कितने चली गई। हुण घर घर विच जिन भूत नहीं पैदा होणगे तो और की होवेगा? कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार, पुत जनूरा धी जनूरी। जिन भूतां दे पैदा होण दा माहौल है, भाव माड़े सूक्ष्म ढांचे जिहड़े शरीर ने उन्हां दे पैदा होण दा माहौल बनिया होया है। देवते पैदा हो सकन माहौल नहीं है। कोई 2-2.5 हजार साल पुराना इतिहास देखिए भारत दा, कहिंदे ने हर दूजे तीजे घर विच देवता हुंदा सी, देवी हुंदी सी। लोकी कहिंदे सने मनुख नहीं है देवता है, इंद्र देवता सी, शिवजी देवता सी, विष्णु देवता सी, जमीन दे ही बंदे सन। जिवें अमृतसर वसाया धन गुरु रामदास जी महाराज ने, बनारस शिवजी ने वसाई, जमीन दा ही मनुख सी। हर दूजे तीजे घर विच कोई देवी होंदी सी देवता होंदा सी। लोकी कह देंदे सने मनुख नहीं इहदा दीवा जलिया होया देवता। माहौल इस तरह बदल गई है हुण हर एक अद घर नूं छड़ के दूजे तीजे घर विच भूत प्रेत ही ने गुस्साखी मां सतगुरु इस तरह कह रहे हैं। हुण देवतियां दे दर्शन औखे हो गए भूतां प्रेतां दे दर्शन करने ओ ही जन्म लेंदे। फिर संक्षेप दे जो है मैं अर्ज करा लमकावा ना मनुख दी जीवन यात्रा उत्थे समाप्त होवेगी जिथों चली सी जित दुआरे उभरे जिथों उभार होया जिथों असी आया परमात्मा तो आया परमात्मा ते यात्रा समाप्त होवेगी। परमात्मा साडा घर है। किड़े दरवाजे तो आया शब्द दे दरवाजे तो आया उत्पत परलो शब्दे होवे शब्दे ही फिर उपत होए क्योंकि कीता पसाओ एको कवाओ एक कवाओ तो सारा पसारा होया एक शब्द तो सारा पसारा होया शब्द दरवाजा है। हुण बड़े ध्यान नाल सुनना जो प्रकाश दे रूप विच परमात्मा है वही शब्द दे रूप विच गुरु है जो शब्द दे रूप विच गुरु है वही प्रकाश दे रूप विच परमात्मा है। नानक सौदे सिमरत वेद पार ब्रह्म गुरु नाही दे। फिर दो नाम क्यों ने दो नाम इस वास्ते ने एक दर है एक घर है पर दर ऐसा जो घर दे नाल जुड़े होया है। दर तो लगना है ते घर दे च प्रवेश करना है शब्द दा जप करना है ते शब्द ने प्रकाश कर देना है बस इन्ना ही गल है। सुते मनुख नु किस तरह जगाओगे आवाज नाल जगाओगे ना। एक मनुख सुता पे है कुछ खड़ाक करोगे ना आवाज करोगे ता जागेगा ना ता उहदी नींद टुटेगी। सुते मन नु किस तरह जगाओगे सिमर सिमर गुर सतगुर अपना सोया मन जागा। वाहेगुरु वाहेगुरु दा जप वाहेगुरु नु सुनाण वास्ते नहीं है अपने आप नु जगाण वास्ते। ए बारीकी हुण मैं थोड़े सामने रखदे हां पूरा सुता होया मन पत्थर है पूरा जागया होया मन परमात्मा है। पत्थर दा भविष्य है परमात्मा होना। पत्थर नु प्रकृति वनस्पति च ले आई पशुआं च ले आई मनुखां च ले आई इत्थे तक प्रकृति ले आई मनुख नु प्रकृति ने खुला छोड़ दिता स्वतंत्र है। तेरी मर्जी है सच बोल तेरी मर्जी है झूठ बोल तेरी मर्जी अखां बंद करके चल तेरी मर्जी अखां खोल के चल। कर्म करण दी स्वतंत्रता है लेकिन फल दी स्वतंत्रता नहीं है। जैसे मैं मकई बोदे हां ते फिर मैनू ख्याल आए मैनू ते कणक चाहीदी सी एवें गलती हो गई मकई बीज बैठा। अच्छा हुण मैं अरदास करा परमात्मा मेरे कोल गलती हो गई है भुल हो गई है तू कणक पैदा कर दे। नहीं कणक तां पैदा होवेगी जे कणक बीजनी सी इते आप बीज आपे ही का इते जेहा बीज है सो लुणे करमा संदड़ा के। कर्म बीज ने ते फल की है दुख ते सुख। छोटे दुख ने छोटे छोटे वो बीज बोए ने जिथों छोटे दुख पैदा हो रहे ने। वड्डा दुख बहुत वड्डे बीज इसने बोए ने तां वड्डा कलेश है। छोटे छोटे सुख ने इन्हें छोटे छोटे बीज बोए ने छोटी छोटी भलाई की थी है। परम आनंद है परम रस है इन्हें बहुत महान बीज बोए ने। कर्म भूमि में बोवो नाम ये धरती शरीर कर्म भूमि है। महाराज कहते नाम का बीज बाओ कर्म करना भी है तो वाहेगुरु वाहेगुरु जपो परम आनंद पैदा होवेगा परम रस पैदा होवेगा परम खेड़ा पैदा होवेगा। पर जिस ढंग नाल जपण दा सतगुरु कहिंदे ने ये इतना औखा है इतना औखा है किधरे मेरी निर्माणता ना समझ लेने। मैनू 50 साल दे करीब होण लगे ने कथा करदे आ बड़े उतार चढ़ाव मैं इस जिंदगी च देखे ने और बड़े बड़े अनुभवी पुरुष भी देखे ने जिन्हां नूं देख के परमात्मा चेते आंदा है ऐसे पुरुष भी देखे ने और बड़े जलील कुबड दुष्ट भी देखे ने और पाला भी पैंदा रहा दुष्टां नाल भी पाला पैंदा रहा भगतां नाल भी पैंदा रहा। पर एक गल जो मेरी समझ च आई है अजे भी उसनों अपनाण विच मैनू सफलता नहीं मिली। इस वास्ते किधरे मैनू निर्माण भी ना समझ लेना कि मेरी फोकी निर्माणता ने एक असलियत बयान कर रहे हैं। दूसरा किधरे भी ना समझ लेना कि इनू अनुभव होवेगा तो कहता है, नहीं अनुभव किवें होंदा इसका मैनू पता है, इतना अहंकार मैं कर लेना, चलो इंज कह दो, इतनी गल कर देना। मनुख का मन किवें जाग सकता है इतना मैनू पता है, पर मन नू मैं पूर्ण तौर पर जगा सकां इस तरह की सफलता मैनू नहीं मिली, पर मैनू समझ आए। ये मैं सतगुरु की हजूरी च इतना दावा करदा, ज्यादा नहीं। किस तरह जागोगे? वाहिगुरु वाहिगुरु की धुन मन नू जगाण वास्ते है, वाहिगुरु नू सुनाण वास्ते नहीं है, उन्हों कोई सुनाण वास्ते नहीं है। वो तो बिन बोलिया सब कुछ जानता, किसा के कीचे अरदास। फिर ये उच्ची उच्ची वाहिगुरु वाहिगुरु ये मन नू जगाण वास्ते, ते मन कदों जागेगा? मन सुने, मन नहीं सुनता, उके नहीं सुनता। 50 साल तो जिहड़ी गल मैं तुहाडे सामने कर रहा ना, इहदे च असफलता है, मन नहीं सुनदा, मन बोलदा है, इहदे बोलण दी आदत है। हुण जबान भी बोले ते मन भी बोले ते कौन सुने? फिर हर एक दी कोशिश होंदी है दूजा सुने जी, दूजा सुने। 10-10 हॉर्न लाए हुंदे ने पंजाब दे पिंडां गुरुद्वारे, 2 बंदे नहीं बैठे हुंदे, ते मैं जद पुछ बैठा 10 हॉर्न लाए ने पिंड सुने, आ दो गए पिंड सुने, तूं भी सुनिया कदी? सुनना सौखी खेड नहीं है, कठिन है। अगर मन सुन लवे तो मन परमात्मा का रूप हो जाता है। हुण खास नुक्ते थोड़े सामने रखते हैं, इन्हों 15 मिनटां गल पकड़ विच आ जाए। जब मनुख बोलता है, बोलण का फुरना पैदा होता है, पवन नाभी नाल टकरांदी है। देही माठी बोले पवन, असी बोलते हैं पवन तत् करके, बोलना पवन तत् की प्रकृति है। इस वास्ते पवन नू बाकी तत्तां विच गुरु कहा है। अगर मनुख बोले ना तो संबंध जुड़ते नहीं, बोल के ही संबंध टुटते हैं, बोल के ही संबंध जुड़ते हैं। टुट गई प्रीत बुर बोल, एक बुरा बोल बोलिया कई सालां दी दोस्ती दुश्मनी च बदल गई। गंड परीति मिठे बोल, एक मिठा बोल बोलिया उपरा मनुख अपना हो गया। मनुखी दुनिया च खेड सारी बोलां दी है, ते बोलना पवन करके। इस वास्ते सतगुरु सुनो, गुरु कहते ने देही माठी बोले पवन, जैसे मन विच फुरना पैदा होंदा है बोलना है, पवन नाभी नाल टकरांदी है। नाभी थोड़ी जिहा खुलदी है, जैसे खुलदी उथों आवाज उठती है, उस आवाज नूं कहिंदे ने परा। एक धुन ते होंदी है, उहदे च अखर नहीं होंदे, एक धुन उठती है। वो जब हिरदे तक पहुंचती है उन्हों अखर मिलते हैं, फिर इन्हों कहते हैं पसंती। बड़े ध्यान नाल सुनना, उही आवाज जब कंठ तक पहुंचती है इन्हों कहते हैं मधमा, पूरा वाक बन जाता है जो जबान ने कहना है, तो जबान बयान कर देती है। इन्हों कहते हैं बैखरी, परा पसंती मधमा बैखरी। नाभी तो आवाज कदों उठती है? जब पवन टकरांदी है। पवन कदों टकरांदी है? जब मन विच फुरना पैदा होवे बोलना है, बोलना है। पवन नाभी नाल टकरांदी है, नाभी तो धुन उठती है, हृदय तक पहुंचती है, अखर मिलते हैं, ये कम सारा तेजी नाल ऑटोमैटिक होंदा है, इनू पसंती कहते हैं। ये फिर कंठ तक पहुंचती है, पूरा वाक बन जाता है जो कहना, इनू मधमा कहते हैं, तो जबान बयान कर देती है, इनू बैखरी कहते हैं। परा पसंती मधमा बैखरी, ये जिहड़ी बैखरी बाणी है वाहिगुरु वाहिगुरु बैखरी है। हुण इहनू परा करना है, जिथों यह धुन उठी है उत्थे लै जानी है। इहनू गुरबाणी इंज कहिंदी है, उल्टी गंगा जमन मिलाओ। गंगा जिथों निकली है, जिथों जन्मी है, उल्टा के हुण इस नूं उत्थे ही लै जाणा जिथों निकली है। हुण दरिया जिथों निकलिया है उसे जगह ते वापस लै जाणा। अक्सर दरिया 100% करीबन पहाड़ां तों निकलदे ने, उचाइयां तों आउंदे ने, ते दरिया नूं पलटा के उत्थे ही लै जाणा जिथों निकलिया है, कठिन है, कठिन। जमीन दे उत्ते मनुख इस तरह नहीं कर सकता, होया नहीं, आज तक कामयाबी नहीं हुई, ऐसा हो नहीं सकता। जिथों गंगा निकली है गंगोत्री तो बद्रीनारायण तो भी परे है, गालबन 32,000 फुट है, एवरेस्ट जितनी ऊंचाई है। एवरेस्ट 35,000 फुट कह देंगे ने, ये जरा थोड़ी जी घट, लेकिन उस वर्ग ही है, उतनी बिखड़ी है। उत्थों निकल दी है ये गंगा, और कबीर कहने जिथों निकली है उत्थे ही ले जाने, पलटा के उत्थे ही ले जाना। ये धुन जिथों उल्ट निकली है पलटा के वापस ले जानी है। धुन जो नाभि तो उठी है, जबान दे राही प्रगट हुई है, कन्ना दे राही वापस जाएगी। सरवनन गोविंद गुण सुनो और गाओ रसना गे, इस धुन नो जबान दे नाल बार प्रगटाना बड़ा आसान है। सारा दिन गपशप चलती रहती है, वाहेगुरु वाहेगुरु भी दो दो घंटे चलता रहता है। ये भी मैरज कर दिया, इको दफा वाहेगुरु आखण नाल मनुख वाहेगुरु का रूप हो जाता है। इको ही दफा एक चित जाए एक छिन दे आयो, काल फास के बीच ना आयो। चलो मैं इन कह दिया करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आख दया, एक पाप भी नहीं मिटेगा, एक दुख भी नहीं मिटेगा। एक दफा वाहेगुरु आखद्या करोड़ा पाप मिट जाते, करोड़ा दुख मिट जाते। करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आखना सौख है, सौख है, बहुत सौख है। एक दफा वाहेगुरु आखना बहुत औख है, बहुत औख है। जबान बोले ते मन पूरी एकाग्रता नाल सुने औख है, पर करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आखना है, मता किधरे एक दफा वाहेगुरु कहण की जाच आ जाए। बस इन नहीं गल, खेड़ एक दफा नाल बनेगी, दो दफा नाल नहीं। प्रभु दे नाम दी इतनी महिमा, एक दफा नाल गल बनेगी। निर्वाण कीर्तन गाओ करते का निमक सिमरत जित छूटे, कीड़ा एक दफा जबान उच्चारण करे वाहेगुरु, उठी ते धुन नाभीत है ते ए धुन वापस नाभी तक जावे, और सुन के जाएगी। मिंट थोड़े रह गए, इसी च मैं गल पूरी करा। जैसे मनुख एकाग्रता नाल सुनेगा ये धुन कन्ना दे राही वापस जाएगी, जिस रस्ते तो आई है जाएगी उसे रस्ते तो वापस। जैसे धुन कंठ तक पहुंची ऐसे मनुख नो वाहेगुरु वाहेगुरु आखण दा रस आवेगा। इदी धुन मधमा तक पहुंच गई है, ऐसे मनुख नो कहने ने वाहेगुरु एदी रसना ते वस गया। जैसे भोजन दी बुरकी मूंच पाई स्वाद ते आ गया, पर ए भोजन अजे खून नहीं बनया, अजे नसा दे गर्दिश नहीं पिया करदा, अजे कंठ तो थले ही नहीं गया, अजे मास नहीं बनया, अजे चर्बी नहीं बनया, अजे खून नहीं बनया, स्वाद ते आ गया। जिन्हों वाहेगुरु आखण का स्वाद ही नहीं आ रहा, यकीन जानो अजे मदमा की खेड भी नहीं बनी, अजे इंज कह लो बुरकी मूंच भी कोई नहीं, गुस्ताखी माओ। वाहेगुरु आखण का स्वाद आ गया, इसनों कहने ने प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। जबान ते बस गया पहचान कि वाहेगुरु कहिंदा रस नाल भर जांदा, कि बाणी जपदा रस नाल भर जांदा, कि बेरसे बाणी नहीं जपदा। कारण शब्द गहरा चला जांदा कंठ तक, इतना सुनदा अजे इतनी गहराई है। सहजे सहजे ये होर गहरा चला जाए पसंती, स्रोत इतनी गहरी हो जाए, जितनी स्रोत गहरी होवेगी उतना आनंद वधेगा, उतना अनुभव वधेगा, उतना ज्ञान वधेगा। ऐसा मनुख अनाहद नाद सुन लग पैंदा। केड़ा अनाहद नाद? जिस नाद तो सारा ब्रह्मंड पैदा होया। कीता बसाओ एको कवाओ पिस्ते होए लख दरियाओ, ऐसा मनुख अनाहद दी धुनी सुन लग पैंदा। मैं अपनी जिंदगी च 5-7 मनुख ऐसे देखे ने जो अनाहद सुन दे। कल भी एक सज्जन इत्थे मैनु मिलिया, इत्थे बैठा नहीं है, मैनु इस तरह कहण लग पिया। कुछ चेहरा उसका लगता सी, मैनु कुछ बोलां दी सच्चाई भी लगती सी। खैर मुख्तसर मैरज करा, आहत जो दो चीजां दे टकराव तो पैदा होंदा है, अनाहत जो परमात्मा तो आवाज आई है, वो आवाज जिस तो ब्रह्मंड बने है। मां बाप तो शरीर आया है, तो शरीर विच मां बाप दी अंश मौजूद है। आवाज तो शब्द तो ब्रह्मंड आया है, तो शब्द ब्रह्मंड विच मौजूद है। इस शरीर विच मां बाप दी अंश मौजूद है, क्योंकि मां बाप तो शरीर आया, मां की रखत पिता बिंदारा। शब्द तो ब्रह्मंड आया, तो ब्रह्मंड विच शब्द मौजूद है। उस शब्द नूं अनाहद नाद कहिंदे ने, परमात्मा की आवाज कहिंदे ने। ए धुन वापस पसंती हिरदे तक पहुंच जाए, ऐसा मनुख अनाहद नाद सुनदा। हुण थोड़ा जिहा पड़ाव रह गया, इत्थे मनुख बड़े तरले रहिंदा है। प्रभु तेरी आवाज ते सुनाई दे रही है, हुण तैनूं देखण दा चाह है। ऐसे मनुख नूं कह देंदे ने कि दर तक पहुंच गया, क्योंकि अनाहद तो उत्पत्ति सी ना, ये दर तक पहुंच गए। इसे तो कबीर कहने, दरमा दे ठांडे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजे, खोल के वाड़ केड़े दरवाजे। कोई बाहर दे दरवाजे नहीं, ये पसंती तक पहुंच गए। उस अवस्था का जिक्र करता है, ये अनाहद नाद सुनन लग पे। कहिंदे ने ये परमात्मा दे दर दी नौबत है। राजे महाराजे बादशाह लोग अपने दरवाजे ते सवेरे शाम नौबत वजांदे सन। हजूर साहब सवेरे शाम वजदी है, शायद आपने विचों कई ने दर्शन किए हैं। दो नगारची बैठे हैं, शहराई वजदी है, उन्हें नौबत वजना कहने। ये लिया ख्याल संतां तो है, ब्रह्म ज्ञानियां तो, भाई परमात्मा के दरवाजे ते नौबत वजदी है। जगमग जोत अनहद धुन गाज है, भाई साहब भाई गुरदास जी अनहद की धुन वजदी है। ऐसा मनुख सुन लग पैंदा है, तो ऐसा मनुख दर तक पहुंच गया है। नौबत दरवाजे ते वजांदे ने बादशाह लोग, नवाब लोग दरवाजे ते, हजूर साहब भी पौड़ियां दे च नौबत वजदी है दरवाजे ते, दर ते। ये प्रतीक चुने आगे, जैसे धुन पसंती तक पहुंचती है, ऐसा मनुख अनाहद नाद सुनता है। पर ऐसा मनुख कहिंदे, प्रभु तेरी आवाज ते सुनाई दे रही है, दूरों सुनाई दे रही है, हुण तेरी झलक मिले तेरे दीदार करदे आं। तां ही कबीर इत्थे प्रार्थना करदे ने, अनाहद नाद तक पहुंचे है। दरमा दे ठांडे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजे, खोल के वा। हे प्रभु हुण दरवाजा खोल। दर तक पहुंच गया, यदि सुरत शब्द नाल जुड़ गई, वह गुरु तक पहुंच गया। गुरु तक पहुंचना बंदे का कर्म है, फिर अगों गुरु का कम है प्रभु तक पहुंचाना। सानू इतनी मेहनत करनी है सुरत शब्द तक पहुंचे, अनाहद नाद तक पहुंचे, अगों फिर गुरु पहुंचा देंदा है। उस अनाहद नाद नहीं दरवाजे खोल देना है। अगर इत्थे जप जारी रहे और जप घट जाता है, क्यों? मनुख अनाहद की धुन में ज्यादा मस्त रहने लग पैंदा है। धुन अगर गहरी चली गई तो नाभी नाल टकराई, नाभी पूरी खुल जाएगी। जल्दी जल्दी मैं बयान करना, नाभी दो हालतों में पूरी खुलती है। एक उदों जब आखिरी प्राण नाभी दे चो निकलता है, आयुर्वेद आचार्य मनते ने आखिरी प्राण नाभी दे चो आउंदा है। हाथ दे चो प्राण निकल गए, हाथ सुन्न हो गए, जबान दे चो निकल गए, जबान सुन्न हो गई, अखां चो निकल गए, हुण अखां नहीं देखदियां, पैरां चो प्राण निकल गए, पैर सुर हो गए, पर बंदा जे जीवदा है आखिरी प्राण नाभी दे चाउंदा है। उन्हूं कहिंदे ने आज काल खुले तेरी गांठड़ी, अज कल तेरी नाभी गंढ खुलण वाली है, खुलेगी। मौत दे समय खुलदी है, जब खुलदी है तो शरीर दी हालत ए होंदी है, हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होआ से, सियाणे लोग कहिंदे ने गंढ खुल गई, नाभी खुल गए, आखिरी प्राण रुखसत। इहदे नाल शरीर की मौत हो जाती है, पर जैसे धुन नाभी नाल टकराती है उदों भी नाभी पूरी खुलती है। शरीर की हालत तो उही बनती है जिहड़ी मौत दे समय बनती है। हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होवा से, इत्थे शरीर की मौत नहीं आउंदी, मन की मौत हो जाती है। मन परमात्मा बन जाता है। मन तो जोत स्वरूप है अपना मूल पछा। इथे आके कई घबरांदे ने, उन्होंने इंज दिसदे जिवें गया सी। वाकई पुराने संस्कार पुराना ढांचा अज तक जो हजारां जन्म होए जिस ढंग नाल जीवें सब खत्म होंदा है। हर के नाम कबीर उजागर जन्म जन्म के पाटे कागर। वह जन्मां जन्मांतरां दे अंदर जिहड़े कागज पए सन सब पट गए। धर्म राय दर कागज फारे जन नानक लेखा समझ। अंदर वह सारा लेखा पे है। जैसे वह फटदा है ते मनुख नूं इंज लगदा है जिवें मेरी मौत आउण लगी। कई मुड़दे ने, इस तरह मैं देखे ने, घबरा के आखिरी स्टेज तो मुड़दे ने घबरा के, भई तो मौत आउण लगी। सीसगंज साहब दे च जद मैं आण लगा, मैनू गालबन हुण चौथा हफ्ता आउण लगा, हरियाणा नारनौल तो एक माता आई। उहदे नाल उहदा पति आया, दो बच्चे सन छोटे छोटे। आके मैनू कहण लगी, ज्ञानी जी हरियाणवी बोलदी सी हिंदी, बई थोड़ी रोज की कथा जो टीवी ते हुंदी मैं सुन के जप करन लग पई सी ते मेरी ते मौत आउण लगी सी। मैं कह नहीं, मौत मन दी आउणी सी, तू मौका गवा दिता। रोई भी जावे बड़ी, कहिंदा मैं तीन दिन दी कर नहीं रही, थोड़ा रस भी नहीं है, मैं दुखी हाँ बड़ी, पर मेरी ते मौत आउण लगी सी। मैं उहनूं समझाया, मन दी मौत आउण लगी सी। बीज जद मिटदा है ते दरख्त बन जांदा है, मन जद मिटदा है तो परमात्मा बन जांदा है। मिटण तू जरूर लगी सी पर परमात्मा हो जाणी सी। इत्थे आके कई घबरा जांदे ने अगर पता ना होए, बोध ना होए। बोध भी होवे तां वी ओह जिहड़ी हालत बणदी है ना, स्याऊ होवा सेहत, तन दे उत्ते स्याही छा जांदी है, फिर चिटियाई है। हूब उस आखिरी जप की हालत दे भी मन दे इस तरह होंदिया एक कालक जिहा सामने आ जाती है, मनुख घबरा जांदा है। अगर बोध होवे यह अभ्यासियां नूं समझाया जांदा है ताकि उस समय घबरान ना। जैसे कोई घबराया नहीं, ठीक है जो कुछ होंदा है होण दो। गंढ पूरी खुल जाती है, शरीर ते जिंदा रहिंदा है, मन की मौत हो जाती है। ऐसा मनुख फिर वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं जपदा, क्यों? एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुत जन्म ना आवा, उहदे रोम रोम दे चलदा है। गुरमुख रोम रोम हर दे, उहदी हर रोम रसना बन जाती। ऐसे सूरत दे चो कह सकदा मैं ते परमात्मा हो गया, बूंद सागर हो गई, सागर दे चलीन हो गई, बूंद नहीं रही। गंगा उतने चिर तक गंगा है जिन्ने चिर तक सागर दे चलीन नहीं हुई। थेम उतने चिर तक थेम है जितने चिर तक सागर दे चलीन नहीं होया। दजला फरात उतने चिर तक दजला ते फरात है जितने चिर तक सागर दे चलीन नहीं होया। सतलुज ब्यास उतने चिर तक सतलुज ब्यास है जितने चिर तक सागर दे चलीन नहीं होया। सागर दे चलीन होके ब्यास भी गया, सतलुज भी गया, गंगा भी गई, जमुना भी गई, दजला भी गया, फरात भी गई, नील नदी भी गई, थेम भी खत्म हो गया, सागर ही सागर है, बूंद परमात्मा हो जाती है। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। भारत विच ऐसा दावा करते रहने, कबीर ने दावा किया, अब तो जाए चढ़े सिंघासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक बहे हैं कोई न सके पछाने। इन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज इन फरमान करते ने, नानक दीन भयो गोविंद सिंह ज्यो पानी संघ पानी। इस्लामी दुनिया च होया मंसूर पर इस्लाम इस नूं बर्दाश्त नहीं करता। इस तरह कोई आखे मैं सच हो गया, बर्दाश्त नहीं करता। जुनैद दा चेला से ए मंसूर, कारा दी गल है मिस्र दा कारा। एक दिन इहदी गंढ खुल गई, अभ्यासी बड़ा सी, सारी सारी रात अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू जपदा सी, खेड बन गई। मुर्शद इसका कोल बैठा सी, जैसे नाभी पूरी खुली ना, उच्ची आवाज नाल कहण लगा, अनल हक अनल हक। हक कहिंदे ने सच नूं, मैं सच हो गया, मैं सच हो गया, मैं खुदा हो गया, मैं राम दा रूप हो गया, राम कबीरा एक बैं, इंज कह उठा। इहदा जिहड़ा मुरशद सी कहण लगा, अज आखे ही फिर ना आखे, ठीक है अज तू सरूर च कह गया फिर ना आखे। कारण इस्लाम दे च काफर कहिंदे ने, ये खुदा दी बराबरी करदा है, पर कौन दसे हुण गंगा जब सागर च मिलेगी तो होएगी सागर। जप जप के परमात्मा दा नाम मनुख होएगा परमात्मा, हर का भगत सो हर ही जिया। संत राम में भेद कुछ ना, एक जन कई में लाख करोरी। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा। जुनेद कहने लगा, तेनों पता है काफर की सजा सजाए मौत है, तो फिर ना आखें। मंसूर कहता, अच्छा मेरे मुर्शद, नहीं आखांगा, नहीं आखांगा। जुनेद कहता, नहीं मैं तेरे सुभा नू जानना, तो खुदा भी कसम चुक नहीं कहेंगा, नहीं कहेंगा। अगर कहेंगा तो सिर्फ डेरे विच, मेरे आश्रम विच, डेरे तो बाहर नहीं कहेंगा, किधरे भी नहीं कहेंगा। हाथ जोड़ के, क्योंकि मुर्शद ने कहा, कसम खुदा नहीं कहांगा, नहीं कहांगा। 10-12 दिन लंघे, कारा दे नवाब ने किधरे फकीरां दी रोटी आखी, जिन्हों ब्रह्म भोज कहते हैं, जिन्हों कहते हैं साधु संतां दा लंगर। पंज प्यारियां नू लंगर छकाना, जिवें साडे च मर्यादा है, उन्हां दे विच ही है फकीरां नू लंगर छकाना। कारा दे जिहड़े वड्डे वड्डे फकीर सन, सारियां नू दावतनामे भेजे गए और आख्या गया सारे पहुंचो अज शाम नू। अंदाजन इतिहास दे ऐसा है 50-55 दे करीब सन। जुनैद नू भी उचेचा है दावतनामा आया भी पहुंचना, चूंकि जुनैद वड्डे फकीरां च गिणिया जांदा सी। ज्यों चल के तैयार होके चलन लगा ना, तो कहन लगा, बेटा मंजूर, रोटी ते तू ही खानी होनी है, ते हर एक ने एक एक दो दो चेले लै जाने, मैं होर ते किसे नू नहीं लै जाना, तू चल मेरे ना। चल पिया। हुण इतने सारे फकीर बैठे, उनके विचकार बादशाह बैठा सी, 10 तरफान एन गोल दायरा, जिवें इस्लामी ढंग है। सारिया दे अंदर भांडे रखे जा रहे सन, सारिया दे अगों बस मैं समाप्त करदा। इतने फकीर आन ते गल ते रब दी चलेगी ना, खुदा दी चलेगी। वारी वारी सारे रब दी गल कर रहे ने, पर सुनैद जद रब दी गल करदा सी, उदों ही गल करदा सी जद उहदे मन दी तैयारी ना होवे, तैयारी होवे। जद तैयारी ना होवे, साफ कह देंदा सी, मैं नहीं कहना, अज मेरा मन तैयार नहीं है। ते मन तैयार नहीं है, मैं जबान नाल मैं नहीं कहना चाहता। जद वारी आई जुनैद दी, उस दिन मन उसका तैयार सी। इतने फकीरां नू देख के वाइब्रेशन इस तरह की बन जाती है। उन्हें जद गहराई च गल्लां कहनियां शुरू कीतियां, कोल बैठा सी मंसूर, निकल गया, आनल हक, आनल हक, आनल हक। काजी भी बैठा, नवाब भी बैठा, गुस्से च आया नवाब। जुनैद नू कहिंदा, काफर नाल रखे तू, चेले के ही रखे ने, काफर रखे ने तू, काफर नू इत्थे लैके आया, मेरा सारा ये धार्मिक समागम तू भ्रष्ट कर दिता, काफर नू लैंदा। मंसूर पकड़िया गया। मुख्तसर मैं अर्ज करा, 15 दिन उसते मुकदमा चलिया, 16वें दिन सजा सुनाई गई, इन सूली ते चाड़ो, ते सूली ते चाड़न तो पहले पत्थर भी मारो। बस आखिरी घटना मैं थोड़े सामने बयान करा, फिर किसी वक्त बाद। जिस वक्त इस सूली ते चाड़न वास्ते ले जा रहे हैं हजारों का इकट्ठ, उदों जुनैद भी पहुंचे है इस भीड़ दे, मंसूर दे कोल गया। उन्हें जेडे बोल कहे ने बड़े कीमती ने, मंसूर ऐ मेरे बच्चे, पागलों की भीड़ विच इतना स्याणा हो जाना भी मैनू इंज लगता है जिवें पागलपन है, पागलपन। गुनाहगारां की भीड़ विच इतना पुनीत हो जाना, इतना सवाबशील हो जाना, यह भी एक गुनाह है, मैनू इस तरह लगता है। भीड़ पागलों की, स्याणा तो एक मैं नहीं बचा सकता, तैनू नहीं बचा सकता। मंसूर भी कहता, मेरे मुर्शद, मरे हुए नू की बचाना, शरीर ते है ही मुर्दा, इनू की बचाना, ते मंसूर नू कौन मार सकता है। जुनैद कोल गल रही नहीं गई, कहने गल सुन, तू खुदा दी कसम चुकी सी, अनल हक नहीं कहांगा, तू के है, मैं तेरे ते गिला करन भी आया, तू खुदा दी कसम क्यों तोड़ी है, बस इतना मैं ये भी पूछना है, ठीक है, इस तो बाद तू रहेगा नहीं, मैं ये पूछना चाहना, तू खुदा दी कसम क्यों तोड़ी है। अखां भरिया ने मंसूर दियां, ऐ मेरे मुर्शद, मैं कौन आना खुदा दी कसम तोड़न वाला, ते जे खुदा ही आखन लग पवे अनल हक, अनल हक, तो बेचारा मंसूर की करे। कहिंदे ने उस दिन इस्लामी दुनिया च घटना घटी, जुनैद ने अपना मस्तक अपने चेले के कदमों पर रख दिता। तू ठीक कहना है, खुदा बोले है, तू नहीं बोलेगा। सच भयो अन कते न जाई, कबीर कहते हैं। नानक लीन भयो गोविंद स्यो, ज्यो पानी संग पानी। मनुख दा गोविंद होना ही भविष्य, गोविंद गोविंद होना ही भविष्य, और कोई भविष्य नहीं है। जिथों आया जित दुआरे उबरे, तिथे ले उवार। आया गोविंद ते, गोविंद तक पहुंचे ते यात्रा सफल है, नहीं ते नहीं। सफल सफल भई सफल यात्रा, आवण जान रहे मिले सादा। इतनिया विचारां प्रवान करनिया सतगुर रहमत करन, इसे जीवन दे चे जीवन यात्रा साड़ी सफल होवे, परम अवस्था नूं असीं प्राप्त कर सकी। बोल चुक दी शमा, सारिआं दा धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

कारण बुढ़ेपा अनहोनी है। कौन दसे बुढ़ेपा ते होना है? अनहोनी नहीं है, मौत ते होनी है, अनहोनी नहीं। भगत कबीर कहते पाड़ो सीखे जो हुआ तू अपने भी जान, समझ ले मेरी अर्थी उठी ते नहीं चुकया, शायद पड़ोसी ने अपने कंधिया ते मैनू चुकया। इस तरह समझ, तू अपने भी जान, ऐसा ओही जान सकदा है जो वर्तमान दिच आ गया है। तो वर्तमान दिच टिकदिया होवन हार सोई परवाना, जन्म हो गया कबूल, जीवन कोल है कबूल, मरण सानू कबूल। लेकिन मरदे दम तक मनुख नू सिर्फ जन्म कबूल है, मरण कबूल नहीं। इस वास्ते मरदे दम तक जन्म दिन मनांदा है, मरण दिन नू भुलाण दी कोशिश करदा है। और यही कारण है कि परम आनंद की प्राप्ति तो वांझा रह जांदा है, रोग दिच जीवदा है, सोग दिच जीवदा है। जबकि वर्तमान दिच जीण वाला रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी। धर्म दी ए महान साधना सारी दुनिया दी धन गुरु नानक देव जी महाराज करांदे रहे, दसते रहे और लोगां नू रोग ते सोग तो कढदे रहे। इस वास्ते जेड़े जेड़े साधना करके वर्तमान दिच जीवे ते भगवान नू जिंदगी च प्रगट कीता, उन्हां सारिआं दी जबान तो एक बोल निकलिया, बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा।